0: Chillax with Radio Musty.
1: सुप्रभात, 5:06 हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड चिलैक्स शो में निलमणि हाजिर हो चुकी है साथ देने के लिए। आज है संडे 12th of July है, तो चलिए इस दिन को मनाते हैं द बेस्ट R&B रेडियो मस्ती के साथ।
0: चिलैक्स विद रेडियो मस्ती,
2: योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: Chillax with Radio Musty.
1: सुबह का वक्त एक नई किताब के पहले पन्ने की तरह होता है। कल जो भी हुआ उसे वही छोड़ दीजिए। आज का दिन नया मौका लेकर आया है। एक मुस्कुराहट के साथ दिन को शुरू कीजिए और याद रखिए कि छोटे छोटे स्टेप्स हर रोज वो लीड करता है बड़े सक्सेस की तरफ। तो चलिए म्यूजिक के साथ एनर्जी को और बढ़ाते हैं। आई नो सुबह का टाइम है, आप नींद में होंगे, लेकिन क्या करें, एक ही संडे मिला है। We must make the most of it. तो नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी के नाम जो भी कनेक्टेड है हमारे साथ आपके ही चिलैक्स शो में।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
3: टक टक बॉलीवुड।

0: सूरत है
1: जैक्स विद रेडियो मस्ती।
2: वैसे हमें भी एक बात कहनी है, मिले हो जब से हमको आप, ये दुनिया खूबसूरत लगने लगी है। एंड यस, आप कनेक्टेड हो चुके हैं सक्सेसफुली अपनी आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ। आप है जयशन जी, गुड मॉर्निंग। आप रश्मा फ्लाग से कनेक्टेड है और नेक्स्ट ट्रैक मांग रहे हैं अपने लिए, हिमाक्षी, कुष्मिता, लवना, बिरमती और हर रियल फैमिली के लिए। प्रेमिला जी भी साथ दे रही है, वो विश कर रही है आप सभी को अ वेरी हैप्पी संडे। सायरा बानो जी और अब्दुल जी को भी बड़ा सा हेलो। शतो बेनागे से वी हैव ज्योति जी, जो डेडिकेट करना चाहते हैं गाना आशनी, रेखा, सुरेखा और माधव फैमिली के लिए। तो हो जाए फॉर यू ब्यूटीफुल पीपल के लिए गाना थोड़ी ही देर में। ऑल्सो आप सुनने वाले हैं अपना हॉरोस्कोप, तो यही पर स्टे ट्यून्ड।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: यस सर, दोस्तों अभी वक्त हो चला है आज की राशिफल का। ये जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। याद रखिए कि कर्म सबसे बड़ा होता है और राशिफल सिर्फ एक सकारात्मक मार्गदर्शन है। तो शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की प्रशंसा होने वाली है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है और हर निर्णय सोच समझ कर लेना है। लकी कलर आपका है लाल और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज धैर्य और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके हित में रहेगा। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। लकी कलर का है हरा और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी मधुर वाणी लोगों का दिल जीत लेगी। नई संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। व्यर्थ की बहस से आपको दूर रहना है। लकी कलर आपका है पीला और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज भावनाओं के साथ साथ विवेक से भी काम लेना है आपको। घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा। सेहत का विशेष ध्यान रखना है आपको। लकी कलर आपका है सफेद और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करेगा। रुके हुए कार्य भी पूरे होने की संभावनाएं बहुत है। लकी कलर आपका है सुनहरा यानी कि गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम सफलता दिलाएगा। छोटी बातों को नजरअंदाज करके बड़े लक्ष्य पर ध्यान दे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। लकी कलर आपका है आसमानी और नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज संतुलित व्यवहार आपको हर परिस्थिति में सफलता दिलाएगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लकी कलर आपका है गुलाबी और नंबर है 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज साहस और संयम दोनों की जरूरत होने वाली है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। हर कदम सोच विचार कर उठाइए। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज नए अवसर और नई सीख आपका इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको बनाए रखना है। लकी कलर आपका है नारंगी और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न रहेगा। लकी कलर आपका है नीला और नंबर है 4।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज रचनात्मकता विचार आपको नई पहचान दिला सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज मन की शांति बनाए रखने का प्रयास करें। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने वाली है। किसी प्रिय व्यक्ति से शुभ समाचार मिल सकता है। लकी कलर का है फिरोजी और नंबर है 12।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Anywhere.
1: Radio Masti.
0: North, South,
1: 103.5,
0: East, West,
1: 96.4,
0: Center,
1: 99.4.
2: RM2, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: So, okay, 6 baje hai. जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अभी नमस्कार
4: नमस्कार नीलमणि श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगे जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपए होंगी जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपए मिलेंगे जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए प्राप्त होंगे मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया वे 1 से 5 जून तक हांगकांग में थे मॉरिशस अंडरग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सफल हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश काउंसिल द्वारा HSBC के सहयोग से किया गया था ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब वर्ष 2026 की पीसा परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा होगी सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एशियाई भाषाएं अरबी खेल मोरिशियन और खेल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी मंगलवार 27 अक्टूबर गणित यानी कि मैथमेटिक्स की परीक्षा के साथ अंत में यह प्रक्रिया संपन्न होंगी विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गॉड को यानी कि IOGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया है IOGC ने एक जहाज पर चेतावनी गोली चलाई जो बिना अनुमति के मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था इसके बाद हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और अंत में मौसम का हाल
5: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti
4: आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी दोपहर को सेंट्रल प्लेटो पूर्वीय ढलानों तथा उत्तर प्रांत में रह रहकर वर्षा होगी जबकि रात के दौरान कुछ इलाके पर मौसम सुहाना रहेगा हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं प्रवाह रेखा के उस पार खासकर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा आज सूर्योदय 7:45 बजे जबकि सूर्यास्त 6:06 बजे
5: on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: जहाँ बिल्कुल इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। 6:30 बजे आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे और हम आपको ये बताना चाहेंगे फिलहाल के लिए अर्जेंटीना की टीम स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेल रही है। हाफ टाइम के पहले हाफ टाइम में अर्जेंटीना ने एक गोल दाग दिया है। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Touch with Radio Musty.
1: ऐसे 6:15 हो चिल्ला है और आप कनेक्टेड हो चुके हैं चिल्लैक्स शो के साथ. यस, मैसेजेस आ रहे हैं जोरों शोरों से. आप है छाया देवी सुकोई जी, आप एंजॉय कर रहे हैं वंडरफुल सॉन्ग्स, आप किचन में हैं और आज आपके हस्बैंड सुभराज जी का बर्थडे है और आप उन्हें बहुत सारी बेस्ट विशेस भेज रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी, फिल्ड विद केयर एंड वार्म रिगार्ड्स आपकी पत्नी छाया की तरफ से बेटा श्रेयाश बेटी शैवी सुकोई फैमिली के लिए. प्लीज़ डेडिकेट नाइस सॉन्ग फॉर हिम. ज़रूर जी, हम ढूंढ कर सबसे अच्छा वाला गाना ही चिल्लाएंगे. एंड वी हैव अपने नाम नहीं लिखा लेकिन आप विश कर रहे हैं सभी को ए ब्लेस्ड संडे. सरोज राजन मुनिका पूनम श्रेया उमेश आशी कैथोबोन के लिए. एंड वी हैव संध्या जी जो मांग रही हैं अच्छा सा गाना अपने हस्बैंड अनंत देव के लिए जो कि होशनुआ के रहने वाले हैं. वो आज अपना 55th बर्थडे मना रहे हैं. एंड लॉट्स ऑफ लव आपकी पत्नी संध्या की तरफ से. तो ज़रूर जी आप सभी के लिए अच्छा सा गाना ज़रूर चिल्लाएंगे जो दोस्त कनेक्टेड हमारे साथ और जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू.

0: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 12 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का है विकल्प। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें मिलेगी अधिक राशि। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का किया है प्रतिनिधित्व। वे 1 से 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हुए हैं सफल। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब वर्ष 2026 की पीसाक परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक हैं निर्धारित। और विदेश में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए उठाया है ये कदम। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष के आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगी, जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपए होंगी। जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपए मिलेंगे। जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए में प्राप्त होंगे। अंत में जो लोग जनवरी 2029 में 60 वर्ष के होंगे उनके लिए पेंशन 60 वर्ष की आयु में 13,107 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 16,567 रुपए होगी। इसके अलावा जीवन यापन यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत से जुड़ी वार्षिक वृद्धि के साथ साथ 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपए का अतिरिक्त अलाउंस भी शामिल है। ज्यादा विस्तार आस्था गोबिंद के साथ।
1: समाज सुरक्षा मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 60 वर्ष की आयु से मिलने वाली संशोधित पेंशन सभी मॉरिशनों के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मंत्रियों और जूनियर मिनिस्टर कुगन पगापेन तथा धनेश्वर दामरी की मौजूदगी में अशोक सुभो ने नई पेंशन व्यवस्था की रूपरेखा पर जानकारियां दी। कुगन पगापेन ने विस्तार से बताया कि ये सुधार कैसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और उन सभी लोगों पर लागू होगी जो 60 वर्ष की आयु से अपना पेंशन लेना चाहेंगे।
2: Ça principe de transition là, il y a encore là. Mais qui ajouté maintenant dans le SAP, c'est que cette personne qui sera anniversaire à 60 ans le 1er janvier 2027, il n'est pas nécessairement besoin d'attendre le 1er janvier 2029 pour être capable d'être éligible au SAP. Le premier jour à l'âge de 60 ans, les gars ont décidé, c'est l'envie qui lit pour toucher ce SAP. Bien sûr, vu qu'ils décident pour prendre les 2 ans en avance, ce qui était prévu, aujourd'hui le 15 555, ils pourraient un SAP de

0: 13 688 roupies. Qu'on assume un taux d'inflation de 3,5%, une compensation de 3,5% annuel chaque année, nous trouvons que sa personne là, à janvier 2027, à l'âge de 60 ans, nous estimons que ce SAP qu'il y pour gagner, c'est de 14 167 roupies. L'année ensuite, parce que pour la compensation par rapport au coût de la vie, 14 167 pour passe à 14 663. Quand il pour 62 ans, c'est 15 176. Quand il pour 63 ans, c'est 15 707. Quand il pour 64 ans, 16 257. Et quand il gagne 65 ans, il pour gagne à la fois la compensation par rapport au coût de la vie, mais aussi ça qui déjà prévoit dans la loi par rapport à CSG, 1000 roupies additionnelles. Et là, il peut gagner 17 826. Donc, nous avons trouvé que juste sur une période de 5 ans, il commence au 14 167, il termine au 17 826. Donc, sa personne-là, quand il peut gagner sa pension-là, il n'est pas pour fixer à vie, comme certains peuvent dire, il peut rester sur ce chiffre-là. Et aussi, chaque année, quand il a un threshold, 65 ans, 75 ans, 90 ans, 100 ans, mais une augmentation qui est prévue, qui est prévue sur le BRP pour n'importe qui pensionné, il peut aussi bénéficier de cela.
1: साथ ही समाज सुरक्षा मंत्रालय जल्द ही आम जनता के लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराएगा। इसकी मदद से लोग आवश्यक जानकारी भरकर अपनी अनुमानित पेंशन की राशि आसानी से जान सकेंगी।
2: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। लगभग दो साल बाद राजनीति के एक मंच पर ये एक वापसी है, जी हाँ, वो भी एक नई ग्राफिक पहचान के साथ। हालांकि लिनियो मोरिस का प्रतीक चिन्ह नहीं बदला है, वह मरून रंग का मिला हुआ हाथ जो अब भी ऊपर उठा हुआ है, लेकिन इसका बैकग्राउंड रंग जरूर बदल कर अब ट्यूक्वाज हो गया है। लेकिन शनिवार दोपहर को प्रेस के सामने पार्टी की उन महत्वाकांक्षियों को ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा जो साल 2029 में होने वाले आम चुनावों के लिए हैं। मॉरिशस विश्वविद्यालय के चार छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया। वे एक और पहले और 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सफल हुए। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश काउंसिल द्वारा HSBC के सहयोग से किया गया था। विजेताओं को उनके पुरस्कार गुरुवार 9 जुलाई को रेजुई स्थित पोल ओक्टाविए ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किए गए। राम राजमीला सीतामणी की रिपोर्ट पर विवरण तीना बुद्धना का।
3: मॉरिशस विश्वविद्यालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में भाग लेने वाली 24 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई। कृतिन डिनू, योगेश लक्ष्मण, सिद्धार्थ कुमार हिरू और ध्रुषि रमाना से बनी टीम हांगकांग से बहुमूल्य अनुभव और नई कौशलों के साथ लौटी है। आइए सुनते हैं टीम के कप्तान कृतिन डिनू को।
4: Avec tout ça, l'équipe internationale là, nous restons compétitifs.
3: इन सभी अंतर्राष्ट्रीय टीमों की भागीदारी से हम प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी कर सके और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला। भले ही हमारा देश छोटा है, लेकिन हमने दृढ़ता और लगन के साथ अपनी क्षमता साबित की है और इस पर हमें गर्व है। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुको ने चारों विद्यार्थियों की उपलब्धि की सराहना की। उनके अनुसार इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने का अवसर देती है।
5: Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient un employeur. C'est ça qu'ils ont peur. Un individu qui est capable de raisonner correctement. Un individu qui est capable de prendre décision. Qui est capable d'identifier d'abord le problème.
3: आज के समय में मालिक वर्ग यानी एम्प्लॉयर्स ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो सही ढंग से सोच विचार कर सके, उचित निर्णय ले सके, समस्याओं की पहचान कर सके और उनके विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत कर सके। मेरा मानना है कि जिस विजेता टीम को मैं बधाई देता हूँ, उसमें ये सभी योग्यताएं मौजूद है। इस तरह ब्रिटिश काउंसिल

0: लगे प्रोग्राम मैनेजर नवीद फाकिया मोहम्मद ने भी कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं भविष्य के पेशेवरों में आवश्यक कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: Entre l'université et le monde du travail, il y a une grosse différence. Donc, à travers les business cases, ils voient quelle est la réalité.
0: विश्वविद्यालय और कार्यस्थल के बीच काफी बड़ा अंतर होता है। बिजनेस केसेस के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्यस्थल की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलता है। वे वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं और उनके व्यवहारिक तथा प्रभावी समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा और व्यावसायिक दुनिया में वास्तविकताओं के बीच मजबूत स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है।
2: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि ग्रेड सिक्स के छात्र और उनके अभिभावक का अब साल 2026 की पीसैक परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी। शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा निर्धारित है। सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, साथ ही साथ एशियाई भाषाएं अरबी, क्रेओल मॉरिशियन और क्रेओल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी। जबकि मंगलवार 27 अक्टूबर को गणित यानी कि मैथमेटिक्स की परीक्षा के साथ अंत में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के प्रधान विशाल बोजीत के बयान पर विवरण तीना बुदना का।
3: Là, ben, les élèves au primaire, je ne prends pas pour l'assessment du deuxième trimestre.
0: इस समय प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी दूसरे टर्म की असेसमेंट में भाग ले रहे हैं। ये असेसमेंट 17 जुलाई को समाप्त होंगी, जिसके बाद विद्यार्थियों को 4 सप्ताह की छुट्टियां मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई पूरी तरह रुक जाएगी। ये नहीं भूलना चाहिए कि पिसाक तथा ग्रेड 4 और ग्रेड 5 की नेशनल एग्जामिनेशंस भी निकट है। जहाँ तक पिसाक का संबंध है, इस साल को कोई मॉड्यूल असेसमेंट नहीं होगा। विद्यार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा एक ही पूर्ण क्वेश्चन पेपर में देंगे, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी और कुल 100 अंक होंगे। शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को अच्छी तरह तैयार करने का कार्य पहले से ही जारी है। थर्ड टर्म 17 अगस्त से शुरू होगा। समय अपेक्षाकृत कम होगा, लेकिन गहन रिविजन के माध्यम से हमें विश्वास है कि शिक्षक विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करेंगे, ताकि वे पिसाक जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।
3: Assez court, mais avec les révisions intenses, nous pensons bon enseignant pour encadrer bons élèves et bons élèves pour être prêts pour savoir l'examen et un examen décisif comme le PISAC.
2: मॉरिशस के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में अब बात करते हैं। जी हाँ, स्पेक्ट्रा आई सेंटर ने लेजर विजन करेक्शन यानी कि दृष्टि सुधार प्रक्रियाओं के लिए नई पीढ़ी के नए उपकरण का अधिग्रहण करके अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत कर लिया। जर्मन निर्माता ज़ेइस द्वारा विकसित ये तकनीक दुनिया में सबसे तेज तकनीकों में से एक है और माना जा रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप पर अपनी तरह की एकमात्र तकनीक है। ये नया अधिग्रहण कि इस केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और मजबूत करता है, जो कोर्नियल ट्रांसप्लांट्स और अन्य नेत्र शैल चिकित्सा यानी कि ऑफ्टामोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी आयोजित करता है। अधिकारियों ने इस पहल का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ अपना सहयोग जारी रखने का इरादा रखती है, ताकि ऐसी विशेष सेवाओं का विकास किया जा सके जिससे मरीजों को विदेश जाए बिना ही मॉरिशस में ही उच्च स्तरीय उपचार की सुविधा मिल सके। मंत्री अनिल बिजू के बयान पर विवरण तीना बुद्धा का।
0: आंखों के अस्पताल में इस समय लगभग 2400 मरीज कैटराक के इलाज का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमने विदेश से डॉक्टरों को बुलाया है, ताकि 1 से 1.5 महीने के भीतर सभी लंबित मामलों का इलाज पूरा किया जा सके। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे अस्पताल में कर्मचारी कितनी मेहनत और अतिरिक्त काम कर रहे हैं। इसलिए हमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के सहयोग की भी जरूरत है। अम्बरीश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खुलने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जब हमें लगता है कि सरकारी अस्पताल में इतने अधिक मरीजों का इलाज समय पर नहीं हो पाएगा, तब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेवा लेते हैं या फिर मरीजों को इलाज के लिए विदेश भेजते हैं। अब अगर यही सेवाएं मॉरिशस की प्राइवेट क्लिनिक में उपलब्ध है तो उनका स्वागत है। उदाहरण के लिए जो नई टेक्निक वे यहाँ लेकर आए हैं, वे अभी हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। यदि मरीज उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और भविष्य में यदि हमें भी इन सेवाओं की आवश्यकता होगी तो हम कोटेशन सिस्टम के माध्यम से विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। जो सबसे बेहतर और उपयुक्त होगा उसी को अपनाया जाएगा।
4: System gouvernement, nous verrons quotations, nous guider which one is better, we go for that.
2: प्रकृति की सेवा में फोटोग्राफी, अपनी इम्पैक्ट प्रदर्शनी के माध्यम से फोटोग्राफर कॉल आनी हमारे पर्यावरण की समृद्धि पर अपना दृष्टिकोण साझा कर रही है। काजिला नेचर पार्क्स द्वारा समर्थित ये पहल ऐसी तस्वीरों के जरिए जीव जंतुओं और वनस्पतियों की सुंदरता को उजागर करती है, जो हमारे प्राकृतिक धरोहर की खोज और उसके संरक्षण का संदेश देती है। ये प्रदर्शनी इस बात को भी साबित करती है कि लोगों को हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करने में तस्वीरों की ताकत कितनी असरदार होती है। मोका में मराठी संस्कृति का जश्न मनाया जा रहा है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन गणेश चतुर्थी के उत्सव के अवसर पर अपनी वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। उद्घाटन समारोह में उप प्रधानमंत्री अरियान नवामारी और मंत्री महेन गुंडिया विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने पारंपरिक रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद बिका भी इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित थे। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉड को यानी IOGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया। IOGC ने एक जहाज पर चेतावनी गोली चलाई जो बिना अनुमति के मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। इनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलसा हुआ अस्पताल में भर्ती है। वियतनाम के फुक्योक द्वीप के पास शनिवार को नौका पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई। मरने वालों में से 10 पर्यटक तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल से थे। उधर टोरंटो में चल रहे कनाडा का सबसे बड़े लैटिन स्ट्रीट फेस्टिवल में गोलीबारी हुई। पुलिस ने इसे सामूहिक गोलीबारी की घटना बताया और जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए हैं और 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से शहर के मिडटाउन इलाके से दूर रहने की अपील की। अगर फीफा विश्व कप 2026 की बात करें तो इंग्लैंड की भारी जीत दर्ज की गई। 2-1 के साथ इंग्लैंड ने नॉर्वे को हरा दिया और फिलहाल के लिए अर्जेंटीना की टीम स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेल रही है। हालिया स्कोर 1-1 है और आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की टीम के ब्रिल एम्बोलो खिलाड़ी को 44वां मिनट पर येलो कार्ड प्राप्त हुआ और इसके बाद 72वां मिनट पर रेड कार्ड प्राप्त हुआ। ज्यादा विस्तार थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारे सहयोगी के साथ विकास रामधनी। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो, पूर्वी ढलानों तथा उत्तर प्रांत में रह रहकर वर्षा होगी, जबकि रात के दौरान कुछ इलाके पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे

की रफ्तार से बहेगी प्रवाह रेखा के उस पार, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर खासकर दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों के उस पार न जाने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 7:15 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 6:15 बजे।

0: चलिए अंत में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का है विकल्प। जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें मिलेगी अधिक राशि। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का किया है प्रतिनिधित्व। वे पहली से 5 जून तक हांगकांग में थे। मॉरिशस अंडर ग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हुए सफल। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब साल 2026 की PSAC का परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर 2026 तक है निर्धारित। और विदेश में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी कि IRGC के ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने अमरीकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए उठाया है ये कदम। तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। ये समाचार आप तक पहुंचाने में फैजान और नवदीत का सहारा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। रॉयल रोड सेकंड सेंपियर में 81 साल की 81 years old की श्री देविंदास वेंकमा जिन्हें सब लोग दास के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बेटी श्रीमती प्रीति जुगाना के घर रॉयल रोड सेकंड सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। टीबीएस लेन विच मिल थ्रियोले में 60 साल के 60 years old के श्री उत्तम सनसरोवा जिन्हें सब लोग राजेश शुफेवान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर टीबीएस लेन विच्यामिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 18 शातुनफ स्ट्रीट बुबासे में 47 साल के 47 years old के श्री संजय रवि पूर्णो मानसी जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती यशोदा पूर्णो मानसी के घर नंबर 18 शातुनफ स्ट्रीट बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौन लेवियो रोजल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। स्कूल लेन पॉइंट ऑफ पीमो में 68 years old की श्रीमती

বিট্টু মালা গরিবা সুমতি বিট্টু মালা গরিবা পেদাশি নাম সুকুনা और जिन्हें सब लोग मिला के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर स्कूल लेना पोतो पीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले साइलेंट पोटवी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रिश्मा रोड सेंट्रल फ्लैक में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारा मतिया बेंगिरती पैदाइशी नाम जावड़ी और जिन्हें सब लोग फोनो के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती मनीषा बिजमोहन के घर रिश्मा रोड सेंट्रल फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावों चुए की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बिरला रोड कोटेज में 76 ईयर्स ओल्ड के श्री जयप्रकाश रामकिसन जिन्हें सब लोग सदन के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सोमवार 13 जुलाई को उन्हीं के घर बिरला रोड कॉटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। एवेन्यू बेल बोंबू में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री बासदेव नेला जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर एवेन्यू बेल बोंबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बोंबू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोंसेन्युअर लीन ओकुले क्यूपिप में 94 साल के 94 ईयर्स ओल्ड के श्री डॉक्टर हेमलाल भंजन जिन्हें सब लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके ताबूत उन्हीं के घर मोंसेन्युअर लीन ओकुले क्यूपिप से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए क्यूपिप स्थित सेंट क्लेमेंट गिरजाघर ले जाया जाएगी। फिर दफनाने के लिए थ्वामामेल का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। गनू रोड रिवेजुपस में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्रा गनू पैदाइशी नाम बुझावन और जिन्हें सब लोग मामा विनय के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय गनू के घर गनू रोड रिवेजुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगाबू रिवेजुपस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सिनफाट रोड मेलविल घोंगोब में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की कुमारी सरस्वती देवी राम केलावन जिन्हें सब लोग जानी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके भाई श्री संजीव राम केलावन के घर सिनफाट रोड मेलविल घोंगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। पटीराम लेन विच्यमिल थ्रियोले में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की कुमारी अस्वंती नवरतन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर पुचतरा लेन विच्यमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कश्मीर रोड कोकिंबोग रिवेजुरंपोर में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की

0: श्रीमती पायरेमा इदू इदुम्बिन, श्रीमती प्यारेमा पायरेमा इदुम्बिन। पैदाइशी नाम पुचिया, और जिन्हें सब लोग सीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री राजू इदुम्बिन के घर काश्मीर रोड कोकैम्बोग रिवेजुआ पाव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2। सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री धीरज भगीरथी, जिन्हें सब लोग विकास के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री विवेक भगीरथी के घर सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। क्वीन एलिजाबेथ सेवन मिल ट्रियोले में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती स्वर्णलता समिसा, पैदाइशी नाम मोती, और जिन्हें सब लोग नालता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री शैलेश समिसा के घर क्वीन एलिजाबेथ सेवन मिल ट्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सेजियम मिल फॉरेस्ट साइड क्यूपिप में 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड के श्री मनीलाल ज्यूता, जिन्हें सब लोग तुनमान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर सेजियम मिल फॉरेस्ट साइड क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेजियम मिल फॉरेस्ट साइड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2:30। रामलगन मुसन रोड बुआरूज गुडलैंड्स में श्री देव आनंद उरिया, जिन्हें सब लोग कालू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी माँ श्रीमती प्रेरणा देवी उड़िया के घर रामलगन मुसन रोड बुआरूज ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। क्लावे रोड सेबास्टोपोल में 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्मावती मुनीश्वर, जिन्हें सब लोग पुष के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर क्लावे रोड सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और एवेन्यू स्टैनली कैथ्रोबोन में 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कोसिला मंडिल रामबरत, जिन्हें सब लोग अनसुईया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम के चार बजे उनकी बेटी श्रीमती छनिस मंडिल के घर एवेन्यू स्टैनले कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन टुमोरो एट 4 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti
3: North, South
2: 103.5
3: East, West
2: 96.4
3: Center
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Good morning, 7:05 हुए हैं और आप कनेक्टेड हो चुके हैं RM2 Radio Musti के साथ in your chillax show.

0: Chillax with Radio Musty. सुबह टाइम है और सरप्राइजेस भरपूर मात्रा में आरएम टू रेडियो मस्ती पर अवेलेबल है। तभी के लिए आप जीत सकते हो एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कंसर्ट जो होने वाला है 25th ऑफ जुलाई को। तो किसको चाहिए टिकट्स? क्वेश्चन है, अभिजीत किन जमाने के गानों के लिए फेमस है? इज इट ए 80s या फिर सेकेंड वन 90s? 80s या फिर 90s किस जमाने के गानों के लिए अभिजीत भट्टाचार्य वेल नोन है? 5491294 पर भेजिए हमें आपके जवाब। गुड लक टू यू।
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
2: टक टक बॉलीवुड।

0: Tracks with Radio Masti.
1: ये सवाल पूछा गया था कि अभिजीत भट्टाचार्य किन जमाने के गानों के लिए वेल नोन थे, एंड सही जवाब हमें बहुत सारे मिले, इसलिए लकी ड्रॉ करना पड़ा एंड लकीली आपका नाम आया। एंड यस, आप है खिलेश गोपीचंद जी, कंग्रेचुलेशन, आपको मिला है टिकट गोल्डन 90 ZR2 का ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य। एंड आप टिकट कलेक्ट करने के

0: लिए वीकडेज पर आ सकते हो MBC पर ही फ्रॉम 9 to 3 PM. जिन लोगों की जीत नहीं हो पाई है नो वरीज जी, और भी मौके मिलेंगे फिर से खेलने के लिए, सो निराश ना होइए. अभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे संडे वाइब को आपके ही चिलैक्स शो में विद निर्मणि.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes, the latest sports updates aapke saath Vikash ji. Good morning.
4: Good morning, Nilmani. And a very good morning to all sports fans. सुपर संडे की सुपर्ब सुबहकालीन स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। इसी समय अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। मैच एक्स्ट्रा टाइम पर है। क्वार्टर फाइनल का ये चौथा मैच यानी क्वार्टर फाइनल का आखिरी मुकाबला और एकदम सनसनीखेज एक्साइटिंग मुकाबला। ये प्रथम भाग एक्स्ट्रा टाइम का फर्स्ट हाफ समाप्त हो गया। इस समय 110वां मिनट खेला जा रहा है एंड इट्स स्टिल अर्जेंटीना 1 स्विट्जरलैंड 1। ये मैच आज सुबह 5 बजे आरंभ हुआ और समाप्त हो जाना था ये था।

0: क्योंकि खेल के 10वें मिनट पर अलेक्सी मैकअलिस्टर ने अर्जेंटीना को आगे किया। कुछ खास नहीं रहा फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में एंडोये का इक्वलाइजर खेल के 67वें मिनट पर, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा उसमें खेल के 72वें 72nd मिनट पर ब्रिल एम्बोलो को मिला रेड कार्ड, यानी अभी तक स्विट्जरलैंड 10 खिलाड़ियों के साथ अर्जेंटीना का सामना कर रहा है। और अर्जेंटीना की तो ये टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजी तो यही है कि रेड कार्ड दिलाओ और थका थका कर मारो, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कब तक स्विट्जरलैंड सहन कर पाएगा, और 9 मिनट अभी बाकी है, यदि ऐसा ही रहा तो ये मैच जाएगा भी पेनाल्टी शूटआउट सत्र में, और जाना भी चाहिए क्योंकि 10 खिलाड़ियों के साथ स्विट्जरलैंड के जांबाज सिपाही समय मैदान पे खेल रहे हैं। अर्जेंटीना 1 स्विट्जरलैंड 1, इस बारे में सुनते रहिए। इससे पहले आज सुबह जो मैच खेला गया 1 बजे आरंभ हुआ, इंग्लैंड के द 3 लायंस ने इसमें नॉर्वे को 2-1 से परास्त किया। जैसा सोचा था, जैसा चाहा था, वैसा ही हुआ। द 3 लायंस सेमीफाइनल में पहुंच गए, फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले के बाद जूड बेलिंगम ने नॉर्वे को 2-0 से हराया, यानी इंग्लैंड 2-1। हालांकि इस मैच में नॉर्वे ने पहला गोल स्कोर किया खेल के 36वें मिनट पर, और लगने लगा था कि मैच काफ़ी कड़ा होगा, कठिन होगा। 36वें पर शेजडेरप का एक गोल नॉर्वे के लिए, लेकिन फर्स्ट हाफ की समाप्ति से पहले जूड बेलिंगम का एक शानदार गोल इक्वलाइजर, मैच 1-1 पर फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ जब आरंभ हुआ तो मैच का रवैया थोड़ा बदल गया, इस ओर से भी और उस ओर से भी, दोनों ओर से प्रहार पे प्रहार। एक्स्ट्रा टाइम के 93rd मिनट पर जाकर जूड बेलिंगम ने एक और कील ठोंकी। इस प्रकार जूड बेलिंगम के 2 गोल, नॉर्वे 1 इंग्लैंड 2। हार्दिक बधाई द 3 लायंस को, 90 मिनट के अंदर स्कोर 1-1। बस 3 मिनट बाद जाकर इंग्लैंड ने एक और गोल स्कोर किया और थका दिया नॉर्वे को। इस मैच में नॉर्वे के स्ट्राइकर एलिंग हैलेन को कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला, और दूसरे गोल के बाद वो थका हुआ दिख रहा था, हताश और निराश भी। लगता है उसका समय भी आ गया था उस समय, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाता, और अंततः इंग्लैंड की जीत हुई 2-1 से। और इस समय जो मैच खेला जा रहा है अभी तक उसमें स्कोर वही है, खेल का ये 2-1। अच्छा, बता रही है भी हमें नीलमणि की स्कोर में बदलाव आया है, चलिए देखते हैं कि क्या स्कोर हुआ है। 2-1 से अभी किसकी जीत हो रही है, अर्जेंटीना ने 2। अच्छा नीलमणि बताइए लाइव क्या क्या चल रहा है स्कोर।
1: यस, लाइव अभी अर्जेंटीना 2, उन्होंने 2 स्कोर किए हैं।
0: ग्रेट, सो अर्जेंटीना ने अपना दूसरा गोल स्कोर कर लिया है, बहुत बहुत बधाई, ऐसा होना ही था। अभी अभी ये गोल स्कोर किया है गुलियन अल्वारेज ने एक्स्ट्रा टाइम के 112वें मिनट पर। सो अर्जेंटीना नाउ लीडिंग 2-1, जैसा कहा था, थका थका कर मारेगा। अर्जेंटीना की ये नीति है, रणनीति है या स्ट्रैटेजी है। सो अर्जेंटीना लाइव इस समय खेल रहा है और 2-1 से अभी आगे हैं स्विट्जरलैंड से, 10 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया, और इंग्लैंड का मुकाबला संभवतः अब अर्जेंटीना से होगा इसी बुधवार की रात 11 बजे। किसको याद नहीं है 1986 का हैंड ऑफ गॉड, जेगो आर्मांडो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड, जिसके बाद उसने वर्ल्ड कप जीता था जर्मनी को हराकर। और इस बार इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना यदि होगा तो बदले की भावना के साथ द 3 लायंस मैदान पे उतरेंगे। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा मंगलवार रात 11 बजे, फ्रांस वर्सेस स्पेन, और उसके बाद एक पोटेंशियल फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल दिखने को मिल सकता है। पर ऐसा भी नहीं, अर्जेंटीना भी फाइनल में पहुंच सकता है और स्पेन भी। सो इस बारे में देखते रहिए और सुनते रहिए। फिलहाल बढ़ते हैं टेनिस की खबर की ओर। लिंडा नुस्कोवा बन गई चैंपियन विंबलडन की, कल रात उसने अपने ही हमवतन कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7 और 6-3 से हराकर ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। और पहला सेट 6-2 से जीतने के बाद वो दूसरा सेट आराम से 5-2 से जीत रही थी, लेकिन

0: फिर उसी की हमवतन कैरोलिना मुचोवा ने घुमा के 7-5 से उसको हराया और तीसरे सेट में जाकर लिंडा नोस्कोवा ने 6-3 से मुचोवा को हराकर ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल किया। हार्दिक बधाई। आज विंबलडन टूर्नामेंट का पुरुष फाइनल होगा मेंस सिंगल फाइनल यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेरेव के बीच। क्रिकेट की बात करें तो भारतीय टीम की भारी हार हुई। 5वां T20 मैच भी वो 56 रनों से हार गई। इंग्लैंड ने अपनी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 257 रनों का भारी स्कोर सामने रखा, जिसके जवाब के तौर पर भारतीय टीम केवल 201 पर ही ढेर हो गई। 56 रनों से कल भारतीय टीम की हार हुई और कुल मिलाकर ये सीरीज तो वो पहले से हार गई थी, 4-0 से ये सीरीज वो हार गई है। एक मैच रद्द करना पड़ा। अब इसी मंगलवार से 5 मैचों की वनडे सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच आरंभ हो रही है। जहां तक महिलाओं का सवाल है तो इंडियन लेडीज प्लेइंग क्वाइट वेल। अभी लॉर्ड स्टेडियम में कल दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ, टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हुआ, जिसमें इंडियन लेडीज और लीडिंग बाय 269 रनों से अभी लीड कर रही है विद 9 विकेट्स रिमेनिंग। पहली पारी में भारतीय टीम ने 285 रन बनाई थी, फिर इंग्लैंड ने जवाब के तौर पर 170 और अपनी दूसरी पारी में इंडिया भी 154 और एक विकेट के नुकसान पर खेल रही है। वापस फुटबॉल जगत पर लौटते हैं। मोरक्को के आउट होने के बाद यानी लास्ट अफ्रीकन टीम क्वार्टर फाइनल राउंड में ही वो ढेर हो गई थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत इकिप डिफेंस के खिलाफ। पर अभी से कल रात जो खबर आई उसमें कि साउथ अफ्रीका और मैमिलोडी सनडाउंस के 25 वर्षीय मिडफील्डर जेडन एडम्स की अकस्मात मृत्यु हो गई। पुलिस अभी तक कारणों का पता लगाने की कोशिश में है। साउथ अफ्रीका इज डिवास्टेटेड बाई द अनटाइमली डेथ ऑफ जेडन एडम्स, कहा स्पोर्ट्स मंत्री और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स यूनियन ने। जेडन एडम्स विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 मैच खेल पाया था और लास्ट 16 में हारने के बाद स्क्वाड के साथ घर लौट आया था और कल ये बुरी खबर सामने आई जिस पर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। सो फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ ऐसा भी होता है केवल 25 साल की आयु में। फुटबॉल में ही यर्गन क्लॉप ने सैद्धांतिक तौर पर इन प्रिंसिपल जर्मन नेशनल टीम का हेड कोच बनने की स्वीकृति दे दी है। जर्मनी के वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट के बाद कोच जूलियन नागेल्समैन ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए क्लॉप इज इन नागेल्समैन आउट। 4 के कंट्रैक्ट पर बहुत जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि साल 2024 में यर्गन क्लॉप ने लिवरपूल को 9 कोच करने के बाद छोड़ दिया था और 1 का सबैटिकल छुट्टी मांगी थी। अब 2 बाद वो जर्मन टीम का नेशनल कोच बनने जा रहा है। सो बता दें कि क्रिकेट में ही किंतु इस बार लोकल क्रिकेट में इट्स ए फंटास्टिक न्यूज़ फॉर मॉरिशियन क्रिकेट, क्योंकि मॉरिशस अब से ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का एक सदस्य एक मेंबर बन गया है। 3 के अथक प्रयास के बाद फाइनली अंततः हिस्ट्री मेड, इतिहास रच चुका है। मॉरिशस क्रिकेट ICC का 111वां सदस्य बन गया है। मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन को हार्दिक बधाई। खेल मंत्रालय और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद मॉरिशस क्रिकेट को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। एक राष्ट्र एक टीम, वन पैशन वन ड्रीम, एक भविष्य सबके लिए। मॉरिशस इज नाउ एन ICC मेंबर ऑफिशियली। सो इंग्लैंड 2 नॉर्वे 1 और इस समय अर्जेंटीना 2-1 से जीत रही है। केवल 2 अभी बचे हैं मैच को समाप्त होने में। सो ऐसा मालूम पड़ता है कि सेकंड सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। आपको फाइनल रिजल्ट जरूर देगी नीलमणि। हमारी ओर से बाय बाय, फिर मिलेंगे। हैव ए फंटास्टिक वर्ल्ड कप। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
1: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीएस सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री शॉक लो डोज अबान प्री की पुफे ओ मेम गाय पा को डेकोरेशन पुर ला काज ऑन डन ऑन डेओ सैनिटेयर

0: Chillax with Radio Musty.
1: आवाज तो आ रही है फीफा वर्ल्ड कप के ग्राउंड से, मचल रहे हैं फैंस फाइनल रिजल्ट्स जानने के लिए, है ना विकास जी?
2: Exactly, Nilmani, and it's final or it's loud and clear, एकदम धमाकेदार तरीके से अर्जेंटीना ने फाइनली एक्स्ट्रा टाइम में जाकर एक नहीं बल्कि दो दो गोल स्कोर किए. फाइनली अर्जेंटीना 3 स्विट्जरलैंड 1. Julian Alvarez ने 112वें मिनट पर और 120वें मिनट पर Lautaro Martinez ने तीसरा गोल स्कोर करके अर्जेंटीना को भेज दिया सेमीफाइनल राउंड.

0: उनमें जिसी जैसा कि हमने उम्मीद की थी और उम्मीद के मुताबिक ही अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड होगा सेकंड सेमीफाइनल। सो ये भी एक एकदम धमाकेदार सेमीफाइनल होगा अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। 1986 में जो हैंड ऑफ गॉड था डिएगो आर्मांडो माराडोना का, उसका बदला तो लेना है, इसलिए ये तो होना ही था। सो सेकंड सेमीफाइनल अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट सेमीफाइनल इसी मंगलवार की रात 11 बजे फ्रांस वर्सेस स्पेन, जो सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वही अभी सेमीफाइनल में है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग फंटास्टिक वर्ल्ड कप 2026। दो सेमीफाइनल अर्जेंटीना इंग्लैंड बुधवार रात 11 बजे, फ्रांस वर्सेस स्पेन मंगलवार रात 11 बजे, बाकी सब उनके हाथों में।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

जैसे एक ब्यूटीफुल गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर मी एंड मनीष से बाय. आई होप यू हैड अ ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग. आपके मॉर्निंग को और नाइस बनाने के लिए योर टाइमलेस तड़का इज कमिंग अप राइट नेक्स्ट. यही पर आरएम2 रेडियो मस्ती पर कीप शाइनिंग कीप वाइबिंग.

0: सब कोई की नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। मॉरिशस के नागरिक लोगन के संगे 3 कोरी के उम्र से ही संशोधित माने एडजस्टेड पेंशन मिले के विकल्प बात है। जिन लोग अपन स्टेट एज पेंशन के भुगतान 3 कोरी 5 बरिस के उम्र ले स्थगित करे के विकल्प चुनलन त उनकरा जस्ती रकम मिली। एकर मतलब यह कि अगर कोनो बरजना सितंबर 2026 में 3 कोरी बरिस के होवत हवन तो उनकरा 3 कोरी के उम्र में 14,490 रुपया मिली, जबकि 3 कोरी 5 बरिस के उम्र ले रुके पर हये रकम 18,210 रुपया के हो जाया। जुन बरजना जनवरी 2027 में 3 कोरी के होवत के हो जाए तो हई उम्र में उनकरा 14,167 रुपया और 3 कोरी 5 बरिस के उम्र में 17,826 रुपया मिली। जन बुजुर्ग जनवरी 2028 में 3 कोरी बरिस के हो जाए तो उनकरा 3 कोरी के उम्र होवे खातिर 13,663 रुपया मिली। अंत में जन लोग जनवरी 2029 में 3 कोरी बरिस के हो जाए तो उनकरा 13,107 रुपया मिली और 3 कोरी 5 बरिस के उम्र में 3,663 रुपया मिली। मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 गो छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश के प्रतिनिधित्व कर लंजा। तो उन लोग पहला से 5 जून ले हांगकांग में रह लंजा। मॉरिशस अंडरग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपन जीत के बाद इस प्रतियोगिता में भाग लेवे में सफल रह लंजा। इस प्रतियोगिता के आयोजन ब्रिटिश काउंसिल के बगल से करल गल और HSBC के सहयोग भी प्राप्त होला। रेजुई स्थित पुल ओक्टावियो ऑडिटोरियम में गल बिफे के इस सब विजेता लोगन के पुरस्कृत करल गल। ग्रेड 6 के लड़का और वो लोग के माँ बाप अब इ बरिस माने 2026 के पिसा के परीक्षा के तिथि सकियंजा नोट करे। इ परीक्षा 22 से 27 अक्टूबर ले निर्धारित बाते। बिफे 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान माने साइंस के संगे परीक्षा शुरू होई। शुक्रवार माने सुख के 23 अक्टूबर अंग्रेजी माने इंग्लिश के परीक्षा होई। लेंदी 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल माने हिस्ट्री ज्योग्राफी एशियाई भाषाएं साथ ही साथ अरबी खेल मोरिसियन और खेल रोड्रिगेज के परीक्षा होए। मंगर 27 अक्टूबर गणित माने मैथमेटिक्स के परीक्षा के संगे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए। तो दूसर देश में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉड को माने IOGC स्ट्रेट ऑफ होमर्स के अस्थाई रूप से बंद करे के ऐलान करल गल। ईरान अमरीकी हस्तक्षेप के आरोप लगा के ई कदम उठैलन। IOGC एगो जहाज पर चेतावनी गोली चलैलन जे बिना अनुमति के मार्ग से गुजरे के कोशिश करता। एकर बाद होमर्स के अस्थायी रूप से बंद कर देवल गल बाते। तेकरवे से हमने के भोजपुरी समाचार समाप्त भल। जैते जैते फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हालिया मैच माने कि फजर के अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के खिलाफ जिन मैच हबीले समाप्त हो गल बाते, एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना के जीत हो गल बाते 3-1 से। लुटारो मार्टिनेज आखिरी गोल दाग के अर्जेंटीना के जीता दिलक। एक रवे से हमने के भोजपुरी समाचार समाप्त भल। ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्ते और आदाब।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। दोपहर को सेंट्रल प्लेटो, पूर्वीय ढलानों तथा उत्तर प्रांत में रह रहकर वर्षा होगी, जबकि रात के दौरान कुछ इलाके पर मौसम सुहाना रहेगा।

0: हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार, खासकर दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:45 जबकि सूर्यास्त 6:06।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
3: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 5 kilos de riz basmati Mahal 11-21 à 289,95 roupies et à l'achat d'un kilo de Kenko Fish Balls à 270 roupies, bénéficiez de 50 points WIV. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
4: On est tous
5: Timeless Tadka.
2: RM2.
5: Timeless Tadka.

0: Express तड़का
1: RM2
2: और बजकर 13 मिनट हो गया है. सभी का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. शुरुआत फॉर टाइमलेस तड़का. और हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जीने का ये गाना था और प्यार से जिएंगे. आज रब का फिर से हम शुक्राना करना चाहेंगे कि उन्हीं की मेहरबानी से आज और एक नया दिन शुरू और एक नई जिंदगी जो हमको मिली है. सो जिएंगे, प्यार से जिएंगे, औरों को खुश रखेंगे और खुद खुश रहेंगे. तो ये है आज का मंत्र. यहाँ पर शुरुआत हो गई है. आ गई है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए. विशिंग ऑल माय लवली पीपल वेरी गुड मॉर्निंग. आप लोग कैसे हो? वेरी होप कि सब ठीक है. अच्छी नींद के बाद आप जागे हो. ये तो संडे वाला दिन है, मॉर्निंग टाइम है और कई तो आदत से मजबूर होते हैं क्योंकि रोज़ाना आप ऐसे अलार्म लगा के जग जाते हो ना. अर्ली राइजर जो आप हो सो जग जाते हैं. तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अर्ली राइजर बनकर हम भी तो साथ देने के लिए आ ही गए हैं और रहेंगे आपके दरमियाँ अब टिल 11 AM. सो जहाँ पर भी साथ जारी है, इट्स आवर मॉर्निंग शो और प्यार के साथ बिल्कुल आप रहेंगे टू एंजॉय सम ऑफ आवर ब्यूटिफुल गाने जो हम लेकर आएंगे. और बाहर के मौसम की बात करें तो ऑन माय वे टू MBC कुछ हल्की सी बारिश हो रही थी. वैसे आपके यहाँ तो मौसम कैसा है शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, औरों को पता चल जाएगा. लेकिन यहाँ पे मौका इस लाइक अभी तो ठंड का मौसम, हल्की सी बारिश. और हमने सोचा है जब ऐसे रोमांटिक मौसम छा जाता है तो कुछ प्यार भरे गाने तो हम बस लेकर आएंगे. बोले हो कि सही सोचा. हाँ तो आपके मैसेजेस रंग लाएंगे ऑन 549-1294. कुछ कहना है सेलिब्रेटिंग 12th of July, संडे वाला दिन. तो यहाँ पे शुरुआत एकदम दमदार से हो गई है. आप सभी लोगों के आने से कुछ और खास बन जाएगा. स्टे वेल कनेक्टेड.
1: RM2
0: Radio Musty.
1: Feel the Musty.
3: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे विद द स्पेशल कोट ऑफ द डे. और आज हम गौर करेंगे महान महात्मा गांधी जी के विचार पर. आप स्वयं वहाँ परिवर्तन बनाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है. सत्य कभी ऐसे कारण को नुकसान नहीं पहुँचाता जो न्याय संगत हो. खुशी तब मिलती है जब आपके विचार, आपके शब्द और आपके

0: के कर्म एक दूसरे के अनुरूप हो. The Great Quote by Mahatma Gandhi.
1: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nesca.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM2
3: Radio Musty
2: Feel

0: RM2 Radio Masti. Feel the Masti.
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: Radio Masti ki team ke saath chaliye United States, Canada or Mexico.
4: World Cup Magazine on RM2 सुबह 1 बजे से मैच देख रहे हैं और अभी लगभग 8 बजे तक देखते रहे और फाइनली द लिस्ट इज देयर, सेमीफाइनल लिस्ट तैयार है। फीफा टॉप 4 रैंकिंग्स में जो 4 टीमें हैं आमने सामने, एक तरफ इंग्लैंड दावत है अर्जेंटीना के खिलाफ और फ्रांस वर्सेस स्पेन। इंग्लैंड ने अपना टिकट बुक किया काफी कठिनाई के बाद नॉर्वे के खिलाफ। बेलिंगा

का डबल रहा इस मैच में। नॉर्वे के लिए अर्लिंग अलॉन इस बार कुछ खास नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा टाइम में उसे निकाला भी गया इंग्लैंड सेमीफाइनल में। सो 1986 के हैन ऑफ गॉड का बदला क्या अटलांटा में होगा? अर्जेंटीना का लेट शो रहा एक बार फिर, अर्जेंटीना 3 स्विट्जरलैंड 1, 90 मिनट के बाद मैच ड्रॉ था 1-1 मैक अलिस्टर का।

0: एंडोई ने इक्वलाइज किया था। उसके बाद 10 खिलाड़ियों के साथ स्विट्जरलैंड की टीम ये लाल दीवार रखकर जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक जाना पड़ा और जूलियन अल्वारेज अर्जेंटीना का मसीहा साबित हुआ। मैच जा रहा था पेनाल्टी की ओर, तब जाकर अल्वारेज का लाजवाब गोल। बहादुर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ियों का दिल टूटा अंतिम पलों में। सो इट्स अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, ये होगा अटलांटा में वेंसडे मैच, और ट्यूसडे मैच स्पेन वर्सेस फ्रांस। सो दीज आर द फिक्स्चर्स। अब देखना है दो मैच जीतकर कौन वर्ल्ड चैंपियन बनता है, इन सब पर आपको जानकारियां देंगे। सो आज कल आराम का दिन, विल गेट बैक विथ दी सेमीफाइनल्स, दो धुआंधार सेमीफाइनल इन द वेटिंग।
1: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: This is our time, Les Tadka, enjoying some great gaane, jo of course is the Sunday ko. और भी स्पेशल बनाएंगे, मदमस्त बनाएंगे, एंड वी आर हियर टू किक स्टार्ट योर मॉर्निंग टाइम. तो अभी बैक टू द क्वेश्चन, जो गाना अभी चला दैट वाज ग्रेटेस्ट सुवेनियर फ्रॉम 90s. तो ऐसे में 90s के फैन हो, फैन जबरदस्त हो आप, सो डोंट मिस द चांस टू बी पार्ट ऑफ द अभिजीत भट्टाचार्य कंसर्ट जो यहाँ पर लाइव होने वाला है सैटरडे 25th of July को. यस, वो आने वाले हैं मॉरिशस, यहाँ पर होंगे हमारे 90s फैंस के बीच में. और कंसर्ट शुरू होगा 7:30 PM लाइव एट SVICC पाया. यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन था, जो गाना अभी चला किस मूवी से लिया गया था, कितने सारे से जवाब मिले हैं. थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस दर्शकों को में पार्टिसिपेट किए हैं, सो दिल से थैंक यू. सही जवाब इट्स परंपरा, परंपरा मूवी ही बिल्कुल सही जवाब. नजर आए थे रवीना, नजर आए थे सैफ अली खान, आमिर खान, एंड दैट वाज अ ग्रेट कहानी. एक्चुअली गाने भी एकदम स्पेशल. और यहाँ पर लकी जो ने अपना काम तो कर ही लिया है, तो चलेंगे कहाँ, लेट्स गो एंड चेक आउट द लकी विनर.

0: तो यहाँ पर कौन जा रही है? Yes, she is the lucky winner, Trisha Devi Duchwa, जो रहती है लाकुइन विक्टोरिया. Trisha, happy day for you. आपकी जीत हो गई है. Yes, congratulations. Yay. आप जा रही हो द कंसर्ट ऑफ अभिजीत दा. एंड डोंट फॉरगेट, इससे पहले आपको आना है एमबीसी. या यू हैव टू कम टू एमबीसी और अपने आईडी कार्ड के साथ आइए. या बिना आईडी कार्ड के साथ आपको टिकट्स नहीं मिलने वाले. सो ब्रिंग योर आईडी कार्ड और एमबीसी में आइए टू कलेक्ट योर टिकट और बेशक जाइए एंड टू हैव अ ब्लास्ट इन द कंसर्ट जो होने वाला है सैटरडे 25 जुलाई को. राइट, सो सी यू सून माय डियर. और यहाँ पर बिल्कुल ये जो चांसेस है आपको देते रहते हैं रेडियो मस्ती, इसीलिए हर पल हर वक्त हम कहते रहते हैं स्टे वेल कनेक्टेड.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Wish you all a very good morning. Check your time. Subah ke theek 9 baje hain. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ आपको नमस्कार अभी
4: नमस्कार हंसिनी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगे जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपए होगी जो लोग जनवरी 2027

0: में 60 वर्ष के होंगे उन्हें इस आयु में 14,167 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपए मिलेंगे। जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि जो लोग जनवरी 2029 में 60 वर्ष के होंगे उनके लिए पेंशन 60 वर्ष की आयु में 13,107 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 16,567 रुपए होगी। इसके अलावा जीवन यापन की लागत से जुड़ी वार्षिक वृद्धि के साथ साथ 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपए का अतिरिक्त अलाउंस भी शामिल है। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक का अब वर्ष 2026 की पीसाक परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकेंगे। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी। शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा होगी। सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, एशियाई भाषाएं, अरबी, क्रेओल मॉरिशियन और क्रेओल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी। जबकि मंगलवार 27 अक्टूबर गणित यानी कि मैथमेटिक्स के साथ पीसा की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। और विदेश की खबर नवनीत के साथ।
1: नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पिछले 3 दिनों में 3 युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। इनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलसा हुआ अस्पताल में भर्ती है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राजधानी काठमांडू में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं में उम्मीद और भरोसा जगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोप्स यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है। IRGC ने एक जहाज पर चेतावनी गोली चलाई जो बिना अनुमति के मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद होमूज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उधर अमेरिकी सेना ने कहा कि होमूज जलमार्ग से गुजर रहे हैं एक व्यापारी जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान पर हमले शुरू कर दी है।
0: तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शुक समाचार सुनते हैं। स्कूल लेन मो सलमा सैत आंद्रे में 93 साल की 93 years old की श्रीमती नोमावती भीम जिन्हें सब लोग नानी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री हमिन्यानन आनंद लक्ष्मण के घर स्कूल लेन मोसलमा सैत आंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मॉस्को रोड हाईलैंड्स में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी सहेरा बिगू जिन्हें सब लोग सहेरा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उन्हीं के मकान मॉस्को रोड हाईलैंड से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए हाईलैंड्स की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 1:30 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
3: RM2 Radio Mustang.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: Back with the timeless Tadka. Sabika, welcome. Now, which could about a minute. It's a warm welcome to everyone. I'm wishing you a very good morning. यहाँ पे एक नया दिन शुरू हो गया है. It's a weekend. It's a Sunday वाला दिन. और हाँ, एवरी डे इज़ लाइक अ फ्रेश चांस सपने देखने के लिए, कुछ सपने साकार करने के लिए एंड टू क्रिएट लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज, राइट? तो ऐसे में आप साथ निभा रहे हो, हर दिन का एक खूबसूरत अवसर ज़रूर यहाँ पर मिल जाता है किसी को. आपका आज का दिन खुशियों से भरा रहे और यही गुड विशेस हम लेकर आए हैं सबके लिए. तो यहाँ पर लेट लीव एंड लीव हैपली का ये मोटो, राइज एंड शाइन वाले गुड वाइब्स जहाँ पर भी साथ दे रहे हो आप. इट्स आवर टाइमलेस तड़का, कुछ ग्रेट गाने और यादगार गानों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं. वेरी होप यू विल एंजॉय योर वीकेंड वाला टाइम. और समय से क्या कुछ हो रहा है, वैसे उठकर आज इट्स लाइक नो स्ट्रेस, थोड़ा सा कम हेक्टिक होता है ना संडे वाले दिन पे काम. बस जो लोग निकल चुके हैं काम पर, सो कुराज आपको, ऑलरेडी यू आर एट वर्क लिसनिंग टू अस, आप सभी का ऑफ कोर्स वेलकम है, कुराज है. और जो घर पर रहेंगे आज, मे बी आपने कुछ प्लान बना लिया है, वेरी नाइस. और अगर अब तक नहीं बना है, सो यू कैन प्लान समथिंग स्पेशल परिवार के साथ, मेक इट अ स्पेशल डे. इट्स वीकेंड, राइट? हफ्ते भर के लिए जो काम रहता है उन सबसे एक ब्रेक तो बनता है, रूटीन लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए. वर वर जो मस्ती जो आपके साथ है, हम सिटिंग विद यू अप टिल 11. दिस इज आवर टाइमलेस तड़का, ब्रिंगिंग यू ओनली द बेस्ट. और आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294 करेंगे आप लोगों का इंतजार.
0: टाइमलेस तड़का,
1: RM2.
0: टाइमलेस तड़का.

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
2: Welcome in Timeless Tadka kat Yadgar Nagmon ke saath to bring it more special timeless gaano ke saath hi entertainment ho raha hai till 11 yahan par with Aja Hansani. Sabhi ka welcome hai. Let us be in the morning mood. जो पॉजिटिव वाइब्स है उनको बस हम शेयर कर रहे हैं थैंक्स टू आवर रेट मस्ती. सो इट्स वीकेंड संडे वाला टाइम और मे बी यू आर हैविंग योर लेट ब्रेकफास्ट. ये भी चलता है, आज संडे है ना. आज कोई पाबंदी नहीं है, आज कोई रोक टोक नहीं है, कोई रश नहीं. इट्स लाइक आराम से इत्मीनान से हम अपने चाय को बैठ कर आराम से पियेंगे. राइट, सो यहाँ पर टाइम फॉर सम डेडिकेशंस नाउ पढ़ेंगे और जहाँ पर आपकी गुड विशेस आई है. गुड मॉर्निंग Hansani, good morning Madhavi jo aayi hai from Saint-Francois Caledine. What a lovely start. So yahan par kuch silai ho rahi hai. Ajay wah, kaam shuru. Sabko ko harsh, aapko enjoying the collection of Timeless Tadka. Thank you and have a wonderful day. Blessing Sunday for everyone. Veena Jagisa jo aayi hai from Bellevue. Aapka welcome hai my dear and next gana ya aapke bachcho ke liye, parivar ke liye and our radio team ke liye bhi kahenge aapko thank you. Veena to Akash is celebrating his birthday aaj. Lots of good wishes to you, Akash. Happy birthday and good wishes coming from your mama, from your dad. Aur sabhi Gobind parivar bhi yahan par hai to wish you a happy day. Hi, main hoon Nishtha from Show Meghoni. Hi, Nishtha. It's a warm welcome to you. Good morning. Gokul parivar ka bhi welcome hai. Aur gana hai aapke bete Tavish ke liye for Pati Ramesh. Aur sabhi Gokul parivar ke liye bhi ek nice track, of course, chal jayega. Good morning, Hansani. Good morning, Veena. Love you, dear. Achha, love you too. यहाँ पर आई गेस झंकार बीच का गाना जब चला तो ये मैसेज आया था. That's your

0: RM2.
1: That was Jalwa, that was music happening on Radio Masti for आज का Timeless तड़का. And music को बस हम सुनते रहते हैं क्योंकि music जो है हमारे मन को शांति और एकदम new energy दे देता है ना. संगीत वो magic होता है जो बिना बोले भी दिलों को जोड़ देता है. जिंदगी तो let's say गीत की तरह होता है, उससे मुस्कुरा कर तो गुनगुनाना चाहिए ना. और हमारा ये मानना है कि संगीत में, म्यूजिक में वो ताकत है जो टूटे हुए दिल को भी सुकून दे देती है. तो ऐसे कश्मकश में म्यूजिक का सहारा है. एंड वी आर हियर टू एंटरटेन यू. इट्स अ टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती. एंड इट्स वीकेंड राइट. हमारे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी काम पर लग गए हैं, घर पर इतना सारा काम रहता है जी, साफ सफाई हो रही है, ऑलरेडी काम काज जारी है. सुकुगाश आपको. कई हमारे फ्रेंड्स अपनी गाड़ी की साफ सफाई कर रहे हैं और रेडियो मस्ती इज ऑन. चलिए थोड़ा सा एनर्जी हम भी आपको दे देंगे रेडियो मस्ती द्वारा. सफर करते समय प्लीज मेंटेन कर्टेसी, मेंटेन पेशेंस और आराम से गाड़ी चलाएं. हाँ, आज संडे है, इट्स लाइक नो हैवी फ्लो ऑफ व्हीकल, नो हैवी ट्रैफिक जाम, लेकिन स्टिल जो स्पीड लिमिट है आप थोड़ा सा कम करें. एंड डू रिस्पेक्ट द प्रोटोकॉल्स एंड हैव सेफ ड्राइविंग. तो यहाँ पर जो म्यूजिकल संगम है, म्यूजिकल जर्नी है, वो हम बिल्कुल सेट करेंगे विद ग्रेट टाइमलेस सॉन्ग्स. अगर आप भी कुछ कहना चाहेंगे, हम तो बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं ना. लेकिन कहने की बारी आपकी. ऑन 5499-1294 वेटिंग फॉर योर डेडिकेशंस एंड मैसेजेस. तो यहाँ पर हंसनी है, बात हम करेंगे, ये जो कनेक्शन है उनको बस और भी स्पेशल बनाएंगे. एंड आज वी आर सेलिब्रेटिंग 12th ऑफ जुलाई, सेलिब्रेटिंग बर्थडे. मिलकर गाएंगे, गुनगुनाएंगे, मस्त रहेंगे. टू विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे.

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: Tamna Sirka Mirabka, welcome once again. And let's have some dedications. Happy birthday to Mr. Manoj Musai. वो तो रहते हैं कौतूहल. Lots of good wishes to you, Manoj ji. यहाँ पे ढेर सारी बधाइयाँ हैं आपकी मामा मोती की तरफ से. We have सासू माँ सुनीता, वाइफ संध्या, बेटा आरव, बेटी श्रेया और साथ में है ब्रदर लो शशि और नीसेस गीतिका एंड खिमी और पूरे परिवार यहाँ पर आए हैं टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. गुड मॉर्निंग ऋषि विदेशी फ्रॉम बॉम्बू. यहाँ पर हंसनी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, दे रही है. हैप्पी टू हियर द सॉन्ग्स. थैंक यू वेरी मच. एंड आई एम श्योर कि अभी आप नाम को सही पकड़ने वाले हो. सो यहाँ पर मुझे गर्लफ्रेंड के लिए गाना फॉर वंशिका एंड फॉर ऑल द लेट राइजर्स. हाँ, कई अर्ली राइजर्स होते हैं लेकिन कई लेट राइजर्स भी होते हैं फॉर द संडे मॉर्निंग. कोई बात नहीं, चलता है जी. ऋषि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर विश. हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक यू फॉर द मैसेज. नेक्स्ट वन फॉर दिनिशा के लिए, सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज 18 इयर्स. हे माय लवली गर्ल, विश यू हैप्पी बर्थडे फ्रॉम योर मामा माधवी, फ्रॉम पापा संजय और सभी हुकुम परिवार है. टू विश यू हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग. एंड जो आप अच्छी बेटी हो सो ऐसे ही अच्छी बेटी बनकर आप रहे हमेशा के लिए. स्वीट ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम हंसनी एंड ऑल द टीम ऑफ रेडियो मस्ती एज़ वेल. और कई लोग जो काम करते हुए बस अपने साथ जारी रखते हैं. अ बिग हेलो टू केजे, हाय, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम. कुनाल जगत सिंह का वार्म वेलकम. और टू गेट यू सम मोर एनर्जी, व्हाई नॉट एक अच्छा सा गाना चल जाए आपके लिए, राइट, आपके लिए एंड फॉर ऑल योर फैमिलीज एंड फॉर ऑल योर डियर वंस. चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट समाचारों की ओर जो 10 बजे होने वाला है. और इसके बाद हम मिलेंगे, कुछ बात और करेंगे इन टाइम लिस्टर का विद आवर हंसनी अप टिल 11 AM.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Good morning, everyone. Check your time. Din ke 10 baje hain. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी और नवनीत के साथ. आप दोनों को नमस्कार.
5: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब वर्ष 2026 की पीसा का परीक्षाओं की तिथियां नोट कर सकते हैं. ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी. गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान यानी कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी. शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा होगी. सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, एशियाई भाषाएं, अरबी, क्रेओल मॉरिशियन और क्रेओल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी. मंगलवार 27 अक्टूबर गणित यानी कि मैथमेटिक्स के साथ परीक्षा समाप्त हो जाएगी. मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है. जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक राशि मिलेगी. इसका मतलब यह है यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है और उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगे जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह राशि 18,210 रुपये होगी. जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपये और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपये मिलेगी. जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए प्राप्त होंगे और जो लोग जनवरी 2029 में 60 वर्ष के होंगे उनके लिए पेंशन की जो रकम है वो 13,107 रुपए होंगे और 65 वर्ष की आयु में 16,567 रुपए होंगे. मोका में मराठी संस्कृति का जश्न मनाया जा रहा है. मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन गणेश चतुर्थी के उत्सव के अवसर पर अपनी वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है. उद्घाटन समारोह में उप प्रधानमंत्री आर्यन नवामारी और मंत्री महेन गुंदिया विशेष रूप से उपस्थित रहे जिन्होंने पारंपरिक रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष आनंद बीका भी इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित थे. और विदेश की खबरें नवनीत के साथ.
6: वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास शनिवार को नौका पलट गई. इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई. मरने वालों में 10 पर्यटक तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम से थे. बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर्स समेत 36 लोग सवार थे जिसमें 32 भारतीय थे. 21 लोगों को बचा लिया गया है. टोरंटो में चल रहे कनाडा के सबसे बड़े लैटिन स्ट्रीट फेस्टिवल में गोलीबारी हुई है. पुलिस ने इसे सामूहिक गोलीबारी की घटना बताया है जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए हैं और 6 घायल हैं. पुलिस ने लोगों से शहर के मिडटाउन इलाके से दूर रहने की अपील की है.
5: तो ये थी अब तक की खबरें. आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: नंबर 18 शतुनफ स्ट्रीट बुबासम है. नंबर 18 शतुनफ बुबासम है. शतुनफ स्ट्रीट बुबासम है. 47 साल के 47 years old के श्री संजय रवि पुर्नो मानसी, श्री संजय रवि पुर्नो मानसी, जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती यशोदा पूर्णो मानसी के घर नंबर 18 शातोनफ स्ट्रीट बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिवियर रोजिल किशमिशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM स्कूल लेन पॉइंट ऑफ पिमो में 68 साल की श्रीमती बिटुमाला गोरीबा, पैदाशी नाम सुकुना और जिन्हें सब लोग मीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर स्कूल लेन पॉइंट ऑफ पिमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन पोटरी किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
3: RM2 Radio Musti.
7: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
8: कभी सोचा है
9: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
8: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
9: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
8: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
9: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
8: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
9: और हमें सुनाए

0: अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वाले आजी। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।

0: तड़का
1: और M2
0: टाइमलेस तड़का
2: और यहाँ पे जो संडे है वो आज के लिए ही हो सकता है ना, यू नेवर नो, क्या पता ये जो दिन आया है, ये जो संडे आया है, सबसे बने फुटफुल, सबसे बड़े स्पेशल आपके लिए, यू नेवर नो। कहते हैं खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती बल्कि और भी बढ़ जाती हैं, और आज किसी अपने को एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए, किसी का हाल पूछिए और दिल से धन्यवाद कहना मत भूलिए। यकीन मानिए आपका दिन और भी खूबसूरत हो जाएगा। एंड वी आर हियर ऑफ कोर्स आपके साथ टू कीप शेयरिंग द गुड वाइब्स, हैप्पी वाइब्स फॉर एवरीवन, कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ म्यूजिक। टाइमलेस तड़का है जी, लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट ऑफ सुवेनियर्स। कीप लिसनिंग, यहाँ पर सभी का वेलकम है। थर्ड आवर शुरू हो गया है, कब शुरुआत हुई और कब ऑलरेडी वी आर इन द थर्ड आवर पता ही नहीं चला। इतना खुशहाल है ये सफर, इतनी मस्ती यहाँ पर हो रही है, ओह माय गॉड। यहाँ पे हंसनी है, विशिंग एवरीवन अ ग्रेट टाइम, ग्रेट संडे, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन।

So, my dear friends, यहाँ पर जिंदगी हर एक दिन एक नया पन्ना तो खोल ही लेती है. बीती बातों को पीछे छोड़िए और आज को पूरे दिल से अपना लीजिए. अपने सपने पर भरोसा रखिए क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है ना. और अगर हम सोचेंगे कि खुश कब रहना है, खुश रहने के लिए बड़ी वजहों का इंतजार मत कीजिए. एक प्याली चाय या अपनों की हंसी, हल्की सी बारिश या मनपसंद गाना, यही छोटी छोटी बातें जीवन को खूबसूरत बना देती है ना. So bringing you so many reasons to stay happy and to be musical for this weekend. This is a timeless tarka going on with Aja Hansini, still connected for the great gaane jo hum lekar aa rahe hain. Hello to Mama Poonam, yes. For Papa Neeraj, ek gaana ho jaye for bhai Nalin, Mausi Aruna, Mausa Vikas, bhai Rayansh aur sab parivar यहाँ पर फैमिली टाइम को एंजॉय कर रही है, जबकि नवनीत इस समय काम पे है. यस, ही इज एट द एमबीसी वर्किंग इन द न्यूज़ डिपार्टमेंट. सो अ बिग हेलो टू नवनीत, विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज न्यू जर्नी, ऑल द हैप्पीनेस फॉर हिम और उनके लिए, परिवारों के लिए छिड़ पड़ा है ये जबरदस्त गाना. एंजॉय.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Timeless Tadka.
0: RM2
3: रेडियो मिस्ट्री पर टाइमलेस तड़का बताओ जो हम सुनी एंड अभी कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए. यस, लेट अस हैव अ फैशन टिप फॉर द ऑल माय लेडीज स्वीट गर्ल्स के लिए जो रेडी हो रही हैं शादी में जाने के लिए, सगाई में जाने के लिए, एनी खास फंक्शन में रेडी हो रही है. सो एक छोटा सा टिप, चूड़ियों से जुड़ी आसान एक फैशन टिप, राइट? ड्रेस के अनुसार चूड़ियाँ चुने, पारंपरिक कपड़ों के साथ कांच या जो धातु की चूड़ियाँ हैं वो आप पहने, जबकि वेस्टर्न आउटफिट के साथ लेट्स से एकदम पतले वाले ब्रेसलेट जो होते हैं ना, या

स्टाइलिश बैंगल्स बेहतर लगते हैं उन वेस्टर्न आउटफिट में। रंगों का सही जो कॉम्बिनेशन है वो आप रखें, अपनी ड्रेस के रंग से मिलती जुलती या कंट्रास्ट चूड़ियाँ पहनने से आपका जो लुक है वो कुछ और अट्रैक्टिव बन सकता है। और कहते हैं ना, कम में भी ज़्यादा खूबसूरत हम लगते हैं।

0: यह चुनाव करें अगर आप जा रहे हो शादियों में और आप पहन रहे हो काफ़ी हैवी लहंगा या फिर काफ़ी हैवी है आपकी साड़ी आपके आउटफिट सो ज़्यादा जो लाइट वाले एक्सेसरीज है वो आप पहनेंगे तो आप और भी ज़्यादा एलिगेंट दिखेंगे ये था एक छोटा सा टिप फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ रेडियो मस्ती
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
4: Tak tak Bollywood.

0: Seamless तड़का
1: RM2
2: हंगामा तो हो जाएगा आफ्टर ऑल इट्स अ वीकेंड राइट इट्स अ संडे टाइम और धमाका हंगामा ये तो होता रहता है हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती ये तो है टाइमलेस तड़का ब्रिंगिंग सम ग्रेट सुवेनियर्स और यहाँ पर बिल्कुल बारी है अब फॉर सम डेडिकेशन गुड मॉर्निंग टू यू हंसनी गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग वेल ठीक हूँ एकदम मस्त आपके साथ प्रकाश वेती आए हैं ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम वेलकम है जीन मॉरिशस एंड अच्छे अच्छे गानों को पाकर ये जो संडे है ना वो कुछ और जबरदस्त हो गया है ये हुई ना बात थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग योर विश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन आप कैसी हो हंसनी ठीक हो जी थैंक यू यहाँ पर हमेशा की तरह हैप्पी संडे विश आप करना चाहेंगे टू ऑल द रेडियो टीम आप हो अनीता फ्रॉम फिको फ्लैक आई हंसनी मैं हूँ साधना और मुकेश के लिए गाना जो लाल माटी से है थैंकिंग यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन हाई डियर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स विद

0: Hediani here with the Hediani Sojourn of Sebastopol. Aka, welcome, Hedia. And गाने अच्छे हैं ये जानकर खुशी हुई कि आप एंजॉय कर रही हो. यहाँ पर एक नाइस वन फॉर यू, आपके विशाल के लिए, फॉर गीतिशा के लिए एंड फॉर ऑल योर परिवार जो है सिचन परिवार, राइट? सभी के लिए एक गाना. We have Selish from Petit Raffray, आपके लिए भी नाइस ट्रैक ये तो चल जाएगा जी. Hi Hansini, hello, hello everyone. Next gana for wife Isha ke liye, for daughter Leisha, for beta Lehan. Aur aap aaye family time ko enjoy karke, iske liye thank you. This is our timeless tarka, bringing you only the best up till 11.
1: Timeless tarka.
2: RM2.
1: Timeless tarka.

टी लव्स यू ऑल और चलेसे के साथ गुड बाय कहने का टाइम आ गया. सुबह से इतना सारा प्यार, इतने सारे गुड मैसेजेस के साथ आप आए, जिससे आपको धन्यवाद है, जिससे थैंक यू आप सभी को. अभी इशारा है ठीक 11 बजे हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर, और इसके बाद बॉली ब्रंच को लेकर आ रही है हमारी प्यारी सी और जे पूनम, दीजिए उनका साथ. यहाँ पर इट्स वीकेंड राइट, सो मेक द मोस्ट, फैमिली टाइम को खूब एंजॉय करें और मिलेंगे जल्द. तब तक के लिए हंसनी की तरफ से गुड बाय एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से और नवनीत से।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मॉरिशस के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में बात करते हैं। स्पेक्ट्रा आई सेंटर ने लेजर विजन करेक्शन यानी दृष्टि सुधार प्रक्रियाओं के लिए नई पीढ़ी के नए उपकरण का अधिग्रहण करके अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत किया है। जर्मन निर्माता ज़ेईस द्वारा विकसित ये तकनीक दुनिया में सबसे तेज तकनीकों में से एक माना जा रहा है और यह अफ्रीकी महाद्वीप पर अपनी तरह एकमात्र तकनीक है। यह नया अधिग्रहण इस केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और मजबूत करता है जो कोनियल ट्रांसप्लांट्स और अन्य नेत्र शैल चिकित्सा यानी कि ऑफ्टामोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी आयोजित करता है। अधिकारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ अपना सहयोग जारी रखने का इरादा रखती है। लगभग 2 साल बाद राजनीति के मंच पर ये एक वापसी है, जो वो भी नई ग्राफिक पहचान के साथ। हालांकि लिनियो मोरिस का प्रतीक चिन्ह नहीं बदला है, वह मरून रंग का मिला हुआ हाथ जो अब भी ऊपर उठा हुआ है, परंतु इसका बैकग्राउंड रंग जरूर बदल कर अब टर्क्वाज हो गया है। लेकिन शनिवार दोपहर को प्रेस के सामने पार्टी की उन महत्वाकांक्षाओं ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा जो साल 2029 में होने वाले आम चुनावों के लिए हैं। ग्रेड 6 के छात्र और उनके अभिभावक अब साल 2026 की पेसाक परीक्षाओं की तिथि नोट कर सकते हैं। ये परीक्षाएं 22 से 27 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। गुरुवार 22 अक्टूबर फ्रेंच और विज्ञान या कि साइंस के साथ परीक्षाओं की शुरुआत होगी। शुक्रवार 23 अक्टूबर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की परीक्षा, सोमवार 26 अक्टूबर इतिहास व भूगोल यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एशियाई भाषाएं, अरबी, क्रियोल मॉरिशियन और क्रियोल रोड्रिगेज की परीक्षाएं होंगी, जबकि मंगलवार 27 अक्टूबर गणित यानी कि मैथमेटिक्स के साथ परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और विदेश की खबरें नवनीत के साथ।
5: जापान में ताइवान में

0: तबाही मचाने के बाद चक्रवात बावी चीन के पूर्वी शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए 18 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोग बाढ़ के कारण तितर बितर हो गए। दक्षिण अफ्रीका और मामेलोडी सनडाउन मिडफील्डर जैदन अडाम्स का 25 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल प्लेयर्स यूनियन ने की है, हालांकि मौत के आधिकारिक कारण का खुलासा नहीं किया गया है। अडाम्स ने पिछले महीने ही फीफा विश्व कप में बफाना बफाना के लिए खेला था और टीम को नॉकआउट दौर तक पहुंचाने में मदद की थी।
1: तो ये थी अब तक की खबरें। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। Avenue Belle Bomboumé, Avenue Belle Bomboumé, 74 साल के, 74 years old के, श्री बासदेव नेला, जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर एवेन्यू बेल बोम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बोम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोनसेनियर लीन ओकुले क्यूपिक में 94 साल के, 94 years old के, श्री डॉक्टर हेमलाल भंजन, जिन्हें सब लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी, उनकी ताबूत आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर मोनसेनियर लीन ओकुले क्यूपिप से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए क्यूपिप स्थित सैंक्लेम गिरजाघर ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए ट्वामा मेल का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
3: कभी सोचा है
4: NBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: NBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन NBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: NBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। NBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस,
4: डोंट मिस इट।
5: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: अरे वाह, किचन तैयार है, रेसिपी तैयार है और सबसे जरूरी है मूड भी तैयार है। 11:10 हो चुके हैं, संडे का ब्यूटीफुल डे, भाई 12th जुलाई 2026 आ गया और मैं कहती हूँ भाई सुबह से लेकर आई थी मसाले लेकर नीलमणि, गानों का तड़का लगाया हंसनी ने और अब शेफ बनकर आ गई हूँ मैं यानी कि पूनम। तो तैयार हो जाइए बॉलीवुड के सुपरहिट सॉन्ग्स के साथ म्यूजिकल फेस्ट बनाने के लिए जिसका स्वाद अगले 3 घंटे तक बना रहेगा। RM2 रेडियो मस्ती के साथ बॉली ब्रंच में आप सबका दिल से स्वागत है। एंजॉय कीजिए अपने आज के गाने। अगर आपको भी कोई डेडिकेशन भेजना है या अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बताना है तो हम चलाएंगे जो कि सुपरहिट होना चाहिए, बस 5499-1294 पर। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ओली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:22 हो चुके हैं दोस्तों। अरे वाह, हमारे कुछ दोस्तों ने पहले से इंस्ट्रक्शन घर में दे दी होगी, अरे मुझे मत उठाना, कल ऑफिस है, बिजनेस करना है सबने, पर लगता है रात भर फीफा वर्ल्ड कप देखते रहे और अब नींद पूरी करने जा रहे होंगे। उनके लिए तो हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, समझ सकते हैं, आपने रात भर अपने जो पैशन है या आपको जो चीज़ पसंद है उसमें टाइम स्पेंड किया और आप सोने जा रहे हैं। बट जो नहीं, जिन्होंने नहीं देखा, उनको तो हम यही कहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहो, घर के काम करो, ऑफिस के जो प्लानिंग्स हैं, फाइल्स हैं,

0: जो पेंडिंग कुछ ईमेल्स चेक करने हैं वो करो, हम आपके साथ हैं, इंजॉय कीजिए अपने गाने। और आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं, अपना ख्याल भी साथ साथ रखिए। और ये भाई टाइम जो है अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट चल रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम तो लंच का भी टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ी सी अगर हेल्प करानी है, किसी को चाहिए हेल्प, तो किचन में भी कर सकते हैं। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने बॉली ब्रंच के प्रोग्राम के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं ना भैया, संडे में अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए फैमिली के साथ या कोई स्पेशल पर्सन के साथ जिसके साथ आपको अपनी सारी जिंदगी बितानी है, तो क्या बात है भाई। अगर इस समय आप कहीं ऐसे के साथ बैठे हो जिसके साथ उसका चेहरा देखते ही आपका दिल करता है, भाई काश ये साथ में मेरे सारी जिंदगी रहे, बस ऐसे ही वाले के लिए हम आपको कहेंगे आप हमें मैसेज कर दीजिए 5499124 पर, हम उनके लिए एक स्पेशल गाना चलाएंगे। और इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है अमिता जी, जो कि इंजॉय कर रही हैं रेडियो मस्ती प्रोग्राम को और कह रही हैं हाय थैंक यू हमारा संडे को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अरे भाई, हम तो हैं इसीलिए कि आप बस मस्त रहें, खुश रहें और घर के काम धाम जो भी हैं, काम आपके जो भी पेंडिंग इतने टाइम से थे वो करते रहिए। चलिए, साथ में प्रकाशवंती जी हैं और वो जो इस समय बेल्जियम से हैं हमें सुन रही हैं और कह रही हैं थैंक यू संडे को इतना मस्त बनाने के लिए। और मैं यही कह रही हूँ कि मैंने तो यहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि मॉरिशस में भी सब डांस कर रहे होंगे। अरे बिल्कुल, डांस करने के लिए तो ये प्रोग्राम बनाया है।

0: बिल्कुल टेंशन फ्री डांस कीजिए, हम आपके साथ हैं। और भी अभी 3 घंटे हम साथ रहेंगे, सिर्फ डांस ही कराएंगे। भाई ये वर्कआउट भी तो बन जाएगा ना। ललित जी साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं मेरे 15 लोग हैं जो मेरा स्टाफ है, जो जमाइकन्स हैं, आपके रेडियो मस्ती की वजह से उन्होंने हिंदी भी सीख लिया और उनको सारे पंजाबी, हिंदी, सारे बॉलीवुड के गानों में डांस करना आ गया। क्या बात है, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। और अगर आपका भी दिल करता है हमें मैसेज करने का तो हमें कर सकते हैं 5499124 पर। साथ में जुड़े हुए हैं यलेश जी जो कि एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं अंतिश रामचरण को, लुसेना जो कि स्विट्जरलैंड से हैं और कह रहे हैं सभी को हैप्पी संडे, इंजॉय यलेश, ये गाना आपके लिए।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.
2: Make some noise!

0: Happy Brunch RM2 Radio Masti.
1: टनटनन अच्छा गाना था ना, क्योंकि मुझे पता है ये पैसे की जो खनक है ना, यही तो इंसान को कहती है कि भाई चलो काम करो। तो मैं तो आपको कह रही हूँ, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस समय भी काम कर रहे होंगे। संडे को भी करना पड़ता है भाई, क्या करें, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है, एक बार कर लीजिए उसके बाद सारी ज़िंदगी आराम ही आराम है। चलिए तब तक आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जी, और कह रहे हैं कि रात भर फुटबॉल देखता रहा और सोने के लिए जा ही रहा था, आपका प्रोग्राम सुन लिया और सुनने के बाद अब मेरा दिल नहीं कर रहा सोने का। मैं मुझे ये बताएं कि आपका प्रोग्राम कितने से कितने बजे तक है। भाई हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम 11 बजे शुरू हुआ था और 2 बजे तक मैं आपके साथ हूँ, यानी कि पूनम। चलिए भैया आप उठे रहिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को। साथ में है प्रीतम जी जो कि न्यू ग्रोव से हैं और कहते हैं एक प्यारा सा गाना मेरी वाइफ के लिए चला दो, शी इज़ बेस्ट, मैंने ऐसी ह्यूमन आज तक नहीं देखी, इतनी अच्छी लेडी, मैं क्या बताऊँ, मैं तो धन हो गया कि इतनी अच्छी वाइफ मेरी ज़िंदगी में आई। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे तो होने चाहिए कि मैसेजेस, क्योंकि ऐसे पढ़ने से और सुनने से अच्छा भी लगता है। और थैंक यू सो मच आपने शेयर किया, और मैम को भी हम बोलते हैं हेलो गुड मॉर्निंग मैम। साथ में कुशल जी भी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं किचन में काम कर रहा था और करते करते रेडियो मस्ती चला लिया और मुझे लग रहा है कि मैं मस्ती में आ गया, काम अपने आप हो रहा है। देखा यही तो होता है गेम म्यूजिक का। तो इंजॉय कीजिए अपने गाने और थोड़ी देर में जुट पाएंगे आप संक्षिप्त समाचारों के साथ। तब तक ये वाला गाना आप सबके लिए।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से. अभी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. मॉरिशस के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में अगर बात करें तो स्पेक्ट्रा आई सेंटर ने लेजर विजन करेक्शन यानी कि दृष्टि सुधार प्रक्रियाओं के लिए नई पीढ़ी के नए उपकरण का अधिग्रहण करके अपनी तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत किया. जर्मन निर्माता जेईस द्वारा विकसित ये तकनीक दुनिया में सबसे तेज तकनीकों में से एक है और माना जा रहा है कि यह अफ्रीका महाद्वीप पर अपनी तरह की एकमात्र तकनीक है. ये नया अधिग्रहण इस केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और मजबूत करता है जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और अन्य नेत्र शैल चिकित्सा यानी कि ऑफ्थाल्मोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी आयोजित करता है. मॉरिशस के नागरिकों के पास अब 60 वर्ष की आयु से ही संशोधित यानी कि एडजस्टेड पेंशन प्राप्त करने का विकल्प है. जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें अधिक रकम मिलेगी. इसका मतलब ये है यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2026 में 60 वर्ष का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु में 14,490 रुपए मिलेंगे जबकि 65 वर्ष की आयु तक रुकने पर यह रकम 18,210 रुपए होगी. जो लोग जनवरी 2027 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 14,167 रुपए और 65 वर्ष की आयु में 17,826 रुपए मिलेंगे. जो लोग जनवरी 2028 में 60 वर्ष के होंगे उन्हें 60 वर्ष की आयु में 13,663 रुपए प्राप्त होंगे. मॉरिशस विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSBC HKU बिजनेस केस प्रतियोगिता के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया था. वे पहले से 5 जुलाई तक हांगकांग में थे. मॉरिशस अंडरग्रेजुएट बिजनेस केस चैलेंज में अपनी जीत के बाद वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में सफल हुए. इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटिश काउंसिल द्वारा HSBC के सहयोग से किया गया था. विजेताओं को उनके पुरस्कार गुरुवार 9 जुलाई को रेजुई स्थित पुल ओक्टाविए ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किए गए. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान पर हमले का नया दौर शुरू किया. अमेरिका ने ईरान में 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने बेहतरीन कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल हमले किए. उधर पूर्वी सीरिया में रविवार को बड़ा हादसा हो गया.

0: फरात नदी को पार करते समय 35 से ज्यादा को ले जा रही एक फेरी पुल से टकरा कर डूब गई। इस हादसे में 2 बच्चे की जान चली गई। हादसे के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नदी के किनारे अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। गैजियावो रोड होशते में 78 साल की 78 years old की श्रीमती कृष्णावती बिकन, पैदाशी नाम गोमिसा और जिन्हें सब लोग कृष्णावती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री विक्रम बिकन के घर गैजियावो रोड गुश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1:30 PM। थ्रेबू नंबर दो वाकवा में 65 साल के 65 years old की श्री आनंद कुमार बिहारी जिन्हें सब लोग आनंद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उन्हीं के घर थेबू नंबर 2 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। फाकुआ गली क्यूपिप में 70 साल के 70 years old के श्री केशवर दत्त श्री की सुन जिन्हें सब लोग अनिल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के साढ़े तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती नालिनी श्री किशुन के घर फौकुआ गली क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:11 हो चुके हैं दोस्तों, श्रिया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे चिकनी चमेली। क्या गाना है, क्या गाना है। चलिए भाई, अगला गाना भी आपको हम सुनाएंगे, बहुत ही सुपर हिट, जो कि 25 तारीख को सैटरडे को आने वाले हैं हमारे ऐसे सिंगर इंडिया से जिनका नाम है अभिजीत भट्टाचार्य। तो एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए और हम सबकी एक्साइटमेंट फुल हो गई है अभी, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनते सुनते हम सब बड़े हो रहे हैं। और ये गाना जो वो जो भी गाते हैं बहुत ही सुपर क्लास होता है। और बॉलीवुड में तो जो चेंज हुआ है ना टाइम, कहते हैं अभिजीत जी की आवाज़, सोनू निगम की हो चाहे कुमार सानू जी की हो, इनकी आवाज़ से कहते हैं एरा चेंज हो जाता है। 10 साल के बाद फिर से बदल जाती है दुनिया, फिर 10 साल के बाद स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, स्टाइल चेंज होता है, हमारे कॉस्ट्यूम चेंज हो जाते हैं, अलग अलग तरह के गाने बन जाते हैं। देखिए क्या वॉइस की क्वालिटी होती है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ और सारा बॉलीवुड चेंज हो जाता है। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं उनकी आवाज़ में एक प्यारा सा गाना, आप सबकी नज़र करते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिएगा। बॉलीवुड का सबसे हिट गानों में से एक है
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Party Brunch RM2 Radio Masti
1: 12:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं बॉली ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। क्या बात है भाई, जैस्मिन सैंडलेस की आवाज़ में आप सुन रहे थे क्या गाना है। और कब की कल या परसों जैस्मिन सैंडलेस ने बताया कि उन्होंने ऑफिशियली एंगेजमेंट कर ली है। क्या बात है भाई, उनको भी बधाई हो। और हम तो यही कहेंगे जिन जिन जो जो अनमैरिड हैं वही शादी करो। जब शादी करते हो तो बढ़िया बढ़िया गाने बनते हैं और खाने को मिलता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि सैटरडे संडे को वेडिंग पे जाते हैं और ये सीजन भी चल रहा है शादियों का, तो वही जो जो तैयारी कर रहा है उसको हम यही कहेंगे बढ़िया से चमक धमक के जाओ, स्मार्ट सा, ब्यूटीफुल सा, हैंडसम सा।

या तो कपड़े पहनो या अच्छा सा मेकअप करो या अच्छे से हेयर स्टाइल करो, जो करना है करो, पर बस मस्त होके जाना और मस्त होकर वापस आना। चलिए जी, हम दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। श्याम देवी चरण जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच सर आपका। ज्योति जी जो कि शायद बनारस से हैं और आशनी रेखा सुरेखा मधु फैमिली के लिए गाना सुनाना चाहती हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे। राकेश किशन हीरा पूजा एंड फैमिली एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं और वो कह रहे हैं हम यहाँ पर सारे शादी की तैयारी कर रहे हैं।

0: हम भी आपके साथ हैं, ललिता जी भी, ललिता जीतन जी भी हमारे साथ हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को. थैंक यू सो मच. पर जो नेक्स्ट मैसेज है वो बहुत प्यारा सा है. ये मैसेज है, एक हमारे दोस्त हैं जो कि लंदन से मॉरिशस में आए हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं. वो ड्राइवर के साथ इस समय बैठे हुए हैं और जब वो प्रोग्राम सुन रहे थे वो कह रहे थे अच्छा मेरा मैसेज पढ़ा जाएगा, चलो मैंने एक गाना सुनना है कि उनको बोलो पूनम जी को कि वो मेरा गाना बजा सकते हैं. बिल्कुल बजा सकते हैं सर, आपने इतना प्यारा गाना चुना और हम क्यों नहीं चलाएंगे आपके लिए स्पेशली. हम तो कहेंगे आपका जो जो ट्रैवल कर रहे हैं आप, मॉरिशस आए हैं, आप इसको इंजॉय कीजिएगा, एक प्यारी सी याद लेकर जाइएगा अपने साथ, हमारे साथ इंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है और बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं. तो बस ये टिंकू जिया जो है हमारा छोटा सा दिल आपके लिए, इंजॉय कीजिए आपका ये गाना.
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: 12:44 हो चुके हैं और ये गाना बदतमीज दिल बदतमीज क्या गाना है, बस मस्ती मुझे तो लग रहा है सब मस्त हो गए होंगे, खाना खा रहे होंगे तो आप अच्छे से खाना खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा अपने गाने पर, जो केयर है अपनी केयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए भाई, ये जो बारिश का मौसम बाहर हो गया है, सुहाना सुहाना सा ब्लैक क्लाउड्स लग रहे थे मुझे, पहले जब मैं आई थी तब तो इतनी बारिश नहीं हो रही थी, बड़ी थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी, अभी मैंने जाके देखा है अभी इतना सुंदर सुहाना मौसम, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आकाश, जैसे पूरा आसमान ज़मीन पर आ गया हो, हाय हर तरफ से धुंध हो रही है। तो मैं आपको सबको यही बोलूँगी, जिनका दिल कर रहा है बस थोड़ा सा अपने घर के बाहर जाइए, और जिनको कोई बाहर आज काम नहीं है घर पर ही रहिए, रिलैक्स कीजिए, संडे आपका है, बॉलीवुड के गाने आपके हैं, सुपर हिट गाने हैं, तो इंजॉय करना तो बनता है, मतलब मस्ती करो, डांस करो, या घर में आराम से खाओ पियो, चाय वाय बनाओ, सूप बनाओ गरम गरम, जो दिल करता है वो करो, पर अगर कोई काम नहीं है तो बाहर मत जाओ। चलिए भाई, हम आपको एक प्यारा सा छोटा सा टिप देंगे, क्योंकि किसी ने पूछा कि मेरी गर्दन बहुत दर्द हो रही है, थोड़ी सी स्टिफ हो रही है, तो क्या कर सकता हूँ या क्या आप क्या कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि नॉर्मली ये उन सब के साथ होता है जो लैपटॉप यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो पहले तो आप अपने पोस्चर को चेक कीजिए कि क्यों दर्द हो रही है, सेकेंड बहुत देर तक आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो भी दर्द होती है, तो आपको बहुत धीरे से, इसका एक ही मंत्र है कि आपको अपनी गर्दन को बहुत धीरे धीरे लेफ्ट एंड राइट तक टर्न करना है, 20 बार एक बार करो, 20 बार एक साइड करो, पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आंखें बंद होनी चाहिए, ये नहीं कि आंखें खोल के करोगे तो फिर आपको नौजिया होगा, आपको थोड़ा सा वॉमिट फील होगा, तो ये मत कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिए, फिर अप एंड डाउन कीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए, तो करते रहिए, और ये नहीं कि आपने आज कर लिया और कल छोड़ दिया, मतलब इसको आप रेगुलर करती रहिए, 10-15 दिन करेंगे आपको देखना आपकी स्टिफनेस भी चली जाएगी, थोड़ा सा शेक करा करो बॉडी भाई, थोड़ी सी एक्सरसाइज करा करो, जो भी दिखता है घर में, कुछ भी हैवी उठा लो, जो भी 10 किलो का दिखता है उसको उठाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहा करो, ये शेक करने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है और जो शाइन आती है, जो ग्लो आता है, जो ऑरा बदलता है, क्या बात है भाई। चलो गाने के साथ अभी बदलते हैं हम, ये गाना आपके लिए है जिन जिनको आज घर में बैठ के चिल करना है।
0: Body Branch RM2 Radio Masti

0: सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं आशिता से संक्षिप्त समाचार. आशिता आपको नमस्कार.
1: नमस्कार पूनम जी, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. मुकेश चंद माथुर, जिन्हें दुनिया गायक मुकेश के नाम से जानती है, भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे पहुंचे हुए गायकों में से एक मानी जाती है. मुकेश ने विशेष रूप से बॉलीवुड के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं, खासकर राज कपूर के लिए अपनी आवाज़ देने के कारण बेहद लोकप्रिय हुए और उनकी आवाज़ की जादू व यादों को ताज़ा करने के लिए अगले सितंबर में भारत के मुख्तार शाह अपने दूसरे कंसर्ट के साथ मौसस आ रहे हैं, जहां वे मुकेश के सदाबहार बॉलीवुड गीतों पर आधारित दो विशेष संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जो कुद आउट सेंटर में लगेगा. करीब 3 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वे उन अमर गीतों को जीवंत करेंगे जिन्होंने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ है, और महान गायक मुकेश को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. कल पोर्ट लुइस में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया. हालांकि सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन को फिर से 60 वर्ष की आयु पर लागू करने की घोषणा की है, इसके बावजूद श्रमिक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा. सेंट रोज स्ट्रीट से लेकर कंपनी गार्डन तक बड़ी संख्या में नागरिकों ने मार्च किया. इस दौरान उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की और उन सभी सुधारों का विरोध किया जिन्हें वे सामाजिक अधिकारों और अब तक हासिल लाभों के लिए नुकसानदायक मानते हैं. मॉरिशस में इस समय लगभग 4,600 विदेशी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि छुट्टियों के दौरान उनके लिए काम करने की अधिकृत सीमा प्रति सप्ताह 20 घंटे से बढ़ाकर 30 घंटे कर दी जाए. इस कदम का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी को पूरा करना है, साथ ही विदेशी छात्रों को बढ़ती जीवन यापन लागत का सामना करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना भी है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने कहा है कि उसने ईरान पर नए हवाई हमलों की एक और श्रृंखला शुरू की है. ये कार्रवाई तब की गई जब तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि उसने अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और अमरीकी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है. ये जानकारी सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आई है. अमरीकी हमलों के कुछ ही घंटों बाद IOGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में स्थित एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया. वहीं अरब अमीरात, कतर, क्यूवेत और बहरीन ने भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जवाब में कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर.

0: चुक साचा सुनिए नंबर दो वाकवा में त्रिभुवन नंबर दो वाकवा में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद कुमार बिहारी श्री आनंद कुमार बिहारी जिन्हें आनंद के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टू डी एट 3 PM रुई फाकुआ क्यूपिप में सत्तर साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री केशवर दत्त श्रीकिसुन जिन्हें अनिल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी आज 3:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती नालिनी श्रीकिसुन के घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टू डेट 3:30 PM रिजर्वर रोड रोस्टिया में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णावती बीकन पैदाशाम रोमिसो जिन्हें कृष्णावती के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके बेटे विक्रम बीकन के घर रोस्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमुख शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टू डेट 1:30 PM बी थ्री सीते त्वाबुचिक यूनियन वेल में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेश महदे जिन्हें पापों रेस्टोविया के मालिक थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणवानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी कमीशन टुमारो एट 1 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Body Branch RM2 Radio Masti

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:11 हो चुके हैं दोस्तों और आप इंजॉय कर रहे हैं अपना वाली ब्रंच प्रोग्राम। भाई हम तो आ जाते हैं आपके लिए क्योंकि हमें पता होता है कि आपके जो हमारे जो गाने होते हैं, आपके मैसेजेस होते हैं, जो आपकी पसंद होती है हमें बहुत पसंद आती है। तो चलिए भाई, ये थर्ड आवर स्टार्ट हुआ है और थर्ड आवर में हम लेकर आए और भी बॉलीवुड के सुपर हिट सॉन्ग्स आप सबके लिए। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करेंगे जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो सुबह से जुड़े हैं, उनकी तो बात ही क्या। आप लोग तो भाई हमारे साथ रहते हैं तभी तो हमारा दिन बनता है और हम सोचते हैं कि भाई आपको भी कैसे प्यारे प्यारे से गाने सुनाए। तो ये गाना जो आने वाला है वो तम्मा तम्मा है। किसको पसंद है पप्पी लहरी की आवाज? भाई मुझे तो बहुत पसंद है। चलो एंजॉय करते हैं ये गाना आप सबके लिए।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: ओली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही बॉली ब्रंच के साथ। और मेरे महबूब, कुछ करना बनता है भाई। मुझे पता है बहुत सारे लोग फटाफट घर के काम निपटा रहे होंगे और कह रहे होंगे जल्दी से सारे काम हो जाएं और उसके बाद आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि रात को भी हो सकता है कि उनका प्लान बन जाए कहीं पर, किसी ने शादी पर जाना है, किसी ने कहीं घूमने जाना है, बच्चों को थोड़ा सा कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा तो पैम्पर करना पड़ता है, उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कहते हैं कि चलो यहाँ मॉल चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, बस के लिए बस इतना ही करना है कि आपने पहले सबसे पहले मुस्कुराना है। मुस्कुराते रहेंगे तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे और यही सबसे बड़ी बात होती है। इसके साथ में हमारे साथ भी 2-3 जने हैं इस समय और वो कह रहे हैं नहीं, वैसे तो बहुत सारे हैं जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, बट कोई किसी के ऐसे मैसेज होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है एलिना और वो कह रही हैं कि मेरी मम्मा ने बोला है उठो थोड़ा सा काम कर लो। और मुझे पता है कि मम्मी क्यों बोलती है भाई, क्योंकि बच्चों के फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उनको अपना रूम साफ करना है, क्लीन करना है, अपने बेडशीट चेंज करनी है, तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी काम जो पेरेंट्स देते हैं बच्चों को तो वो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। और कह रही हैं कि पर मैं इंजॉय करते हुए गानों को सारा घर का काम कर रही हूँ। चलो भाई अच्छी बात है, इंजॉय करते रहे। साथ में प्रियांशी जुड़ी हुई है, नलिनी जुड़ी हुई है, नंदिनी, आरती गुरचरण जी जुड़ी हुई है और राजन रघुपति जी जो कि लंदन से हैं और वो बस इतना ही कह रहे हैं कि रेडियो मस्ती है तो हमें मॉरिशस की कोई टेंशन नहीं होती है, हमारे को सारी इंफॉर्मेशन लंदन में बैठे बैठे मिलती है, चाहे न्यूज़ हो, चाहे हमें बातें करनी हो, चाहे कोई भी रिलेटेड टू बॉलीवुड हो, हमारे को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पास होती है। थैंक यू सो मच आपका इतना साथ देने के लिए और इतना प्यार और प्रेम देने के लिए, थैंक यू। और ये हम उनके लिए भी बोलेंगे जो इस समय लंच कर रहे हैं या

0: लंच करके थोड़ा सा कहते हैं ना थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, उनको बोलने वाले हैं कि बिल्कुल सुस्त नहीं होना, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त होके गाने सुनते रहिए और उसके साथ इंजॉय कीजिए। थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, हल्का फुल्का नहीं करना कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा जो खाना खाया है उसको आराम से पचाइए।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:41 हो चुके हैं दोस्तों, और ये थर्ड आवर चल रहा है, पर थर्ड आवर पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। चलिए भाई दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे वो दोस्त, कह रहे हैं प्लीज़ हमारा मैसेज पढ़ लो। जी क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम तो बिल्कुल यहाँ पे बैठे इसलिए कि हम आपके मैसेजेस पढ़ें, आपसे बातें करें। चलिए भाई हेमंत जी जुड़े हैं और उनका कह रहे हैं कि उनका जो स्टाफ है वो इंडिया से आया हुआ है, मतलब उनका एक रेस्टोरेंट है उसमें जो स्टाफ है इंडिया से आया, और वो बहुत ही रेडियो मस्ती को पसंद करते हैं, कहते हैं कि भाई रेडियो मस्ती चलता है तो हम आराम से काम करते रहते हैं, तो हम उन्हें सब शेफ्स को कहते हैं या जो भी किचन में काम करते हैं बस उनको कहते हैं एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए और खाना बनाते रहिए। भाई ये आपकी पावर है कि हमको खींच लाती है आपके खाने की खुशबू। चलिए जी इसके साथ में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है एक मैम का, नाम बताना भूल गई शायद, बट कह रही हैं कि उनकी बेटी की शादी है, अब कब है वो भी नहीं उन्होंने बताया, बट हम उनको यही कहेंगे कि हमारी तरफ से बेटी और दूल्हे राजा को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी नई जिंदगी प्यार भरी हो, खुशियों से भरी हो, मुस्कुराहट से भरी हो, आप अच्छे से उनको विदा करें। और जिन जिन दोस्तों के घरों में शादी की शहनाइयां बजने वाली है, जैसे कल हो रहा है, संडे होता है, सैटरडे होता है, और उसके बाद बहुत सारे हफ्ते हैं, अभी तो वही शादी के सीजन चल रहा है, तो उन सबको हम यही कहेंगे कि आपकी जिंदगी हमेशा ऐसी खूबसूरत से रहे। हमें मैसेज करते रहिए 5499124 पर, इंजॉय कीजिए आपकी बिटिया रानी के लिए प्यारा सा गाना, और उन सभी कपल्स के लिए जिनकी भी शादी है।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:51 हो चुके हैं दोस्तों, देखते ही देखते 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बॉलीवुड के साथ जुड़े रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरी तरफ से तो बाय बाय है, बट लास्ट जो गाना है बगन फैमिली, बिहारी फैमिली एंड सोया बिहारी जी के लिए होगा। और वीना जी फ्लाग से आई हैं तो वही देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं, हम ज़रूर आपका नाम लेना चाहेंगे। आप इंजॉय कर रहे हैं शुरू से बिगनिंग से, तो वही इंजॉय करते रहिए। और उन सभी का जिन्होंने हमारा साथ दिया सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक साथ दिया है, मेरे बाद आएंगी आपको साथ देने के लिए परी, तो उनका भी साथ जरूर दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और घर के सारे काम निपटाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, बाय।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आशिता से आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में वापस स्वागत है सबका। निजी क्षेत्र मॉरिशस में नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बना रहा है। एबेन में स्थित स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल ने शुक्रवार 10 जुलाई को एक नई लेजर इन्फ्रैक्टिव सर्जरी सेंटर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी उपस्थित रहे। उन्होंने मॉरिशस में आंखों से संबंधित बीमारियों के उपचार में निजी क्षेत्र के योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि वर्तमान में 2400 मॉरिशन सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में मोतियाबिंद यानी कैटराक्ट के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। मॉरिशस में इस समय लगभग 4600 विदेशी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि छुट्टियों के दौरान उनके लिए काम करने की अधिकृत सीमा प्रति सप्ताह 20 घंटे से बढ़ाकर 30 घंटे कर दी जाए। इस कदम का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी को पूरा करना और साथ ही विदेशी छात्रों को बढ़ती जीवन यापन लागत का सामना करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना भी है। और कल पोर्ट लुइस में शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। हालांकि सरकार ने सार्वभौमिक पेंशन को फिर से 60 वर्ष की आयु पर लागू करने की घोषणा की है, इसके बावजूद श्रमिक संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सेंट जॉर्ज स्ट्रीट से लेकर कंपनी गार्डन तक बड़ी संख्या में नागरिकों ने मार्च किया। इस दौरान उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की और उन सभी सुधारों का विरोध किया जिन्हें वे सामाजिक अधिकारों और अब तक हासिल लाभों के लिए नुकसानदायक मानती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में एक शक्तिशाली तूफान ने दस्तक दी है। ये एक सप्ताह के भीतर देश में आने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। तूफान के रास्ते में आने वाले इलाकों से लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बावी नामक इस तूफान का अधिकतम फैलाव लगभग 1000 किलोमीटर है, जो लगभग फ्रांस की चौड़ाई के बराबर माना जा रहा है। ये तूफान शनिवार शाम सबसे पहले तटीय शहर ताइजू से टकराया और इसके बाद आधी रात के आसपास वेंजाओ में दूसरी बार जमीन से टकराया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद। साथ रहे, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। क्यूपिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की बीबी साबेरोन रामजनी पैदाश नाम कुदरत इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज उनके मकान क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बिगाह का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल आफ्टरवर्ड्स टुडे। अली मकादम बीच तुम्बू में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रीनिवासन परशुरामन जिन्हें शिवम के नाम से ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके भाई अजागैन तंद्रायन के घर बीच तुम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसानिन की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv. Plug and play. RM2. Plug and play.

0: Plug and Play.
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, जहां पर आपके लिए हम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर आए हैं और आप हमारा साथ दे रहे हैं. सो विशिंग यू अ वंडरफुल संडे आफ्टरनून. मौसम तो आज काफी सेट हो चुका है. वैसे मौसम ऐसा ही है जहां पर आप कोजी कोजी लेजी लेजी संडे को एंजॉय कर सकते हैं. ना काम की भाग दौड़, ना कोई लिस्ट टू कम्प्लीट, बस आपको एंजॉय करना है अपने संडे को रिलैक्स एंड चिलैक्स RM2 रेडियो मस्ती के साथ. एंड मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, जहां पर हम आपकी खुशियों को प्लग इन करते हैं और प्ले करते हैं आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग. So, बस आप भी हमारे हमसफर बन जाएं. And to get you in the Sunday mood, we have this beautiful track. And well, that's in the voice of Rahat Fateh Ali Khan sahab, Nusrat sahab ka ek evergreen track. Usse recreate kiya hai aur of course, ye gana humare sabhi listeners ke naam. Sunday afternoon, jude huye hain Radio Masti ke saath. Messages, dedications, aapke loved ones ke naam rahega aapka intezaar.

अभी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ लिसनर्स हमेशा साथ देते हैं, सो थैंक यू सो मच. अभी के लिए तो मिस्टर लकी हमारे साथ कनेक्टेड हैं. आप काम खत्म, संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, एंड अब फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक होम. घर जाकर थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है. साथ में कुछ दोस्त भी है और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो मिस्टर लकी साथ में है, गोविंद, दयाल, सभी के लिए दिस ब्यूटिफुल ट्रैक हम चला रहे हैं ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. हैव अ सेफ राइड बैक होम और हमारे साथ जुड़े रहें ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. और वेल फ्रेंड्स साथ दे रहे हैं आप, सो नॉट टू फॉरगेट आपकी मैसेजेस, आपकी डेडिकेशंस 5499-1294 पर. अभी के लिए ये गाना जो रहा वेरी वेरी पॉपुलर, खान साहब की आवाज फ्रॉम द फिल्म धुरंधर. अ ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर एवरीवन, स्पेशली गोज आउट लकी जी आपके नाम, फॉर मिस्टर गोविंद, फॉर दयाल और सभी आपके दोस्त जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. चलिए बस में है और हमें सुन रहे हैं, सो ये गाना आपके नाम. एंड इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ धुरंधर, फॉर ऑल द फैंस ऑफ रणवीर सिंह.

0: tag and play.
1: RM2.
2: So that was Barbaad, the female version, Shilpa Rao ki awaaz and a beautiful track aap sabhi ke liye jo hamara saath de rahe hain on Radio Masti. So umeed karte hain dosto apna ye Sunday aap enjoy kar rahe hain aur pure hafte ek ki thakan ko dur karne ke liye milte to mushkil se do hi din hai aur wo bhi itni jaldi nikal jate hain ki waqt ka pata hi nahi chalta. Lagta hai na ki Monday to Friday itna slowly dheeme dheeme aage badhta hai aur jaise Saturday Sunday aata hai fat se khatam ho jata hai. Lekin tabhi to hum kehte hain ki har ek pal ko khaas aur special banaye aur jab आप अपने वीकेंड में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो फिर आपका हफ्ता भी थोड़ा आराम से गुजरता है. कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे तो काम करते रहते हैं, ऑफिस का काम, ये काम, वो काम, और फिर जब वीकेंड आता है तो घर के काम निकाल के बैठ जाते हैं, यानी कि खुद के लिए तो आराम का दो मिनट भी नहीं निकाल सकते. लेकिन हम तो कहते हैं खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाले, थोड़ा अपने बारे में भी सोचे, आराम से बैठ के चाय की चुस्कियों को एंजॉय करें, मौसम को एंजॉय करें और हमारे प्यारे प्यारे गानों को एंजॉय करें. तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, ऋषि विदेशी साथ दे रहे हैं बॉम्बू से, एंड विशिंग अ लवली संडे टू एवरीवन. सभी RM2 लिसनर्स के नाम, आपकी मोदी गर्लफ्रेंड के नाम, साथ ही गुड फ्रेंड्स वंशिका एंड फुटबॉल फैंस के नाम, और कहते हैं दैट गाना हो जाए सभी के लिए जो इस वक्त साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच. और कहते हैं स्पेशल डेडिकेशन टू HR टीम वर्किंग ऑन दिस संडे आफ्टरनून, अ लिटिल एफर्ट टू स्ट्राइव फर्दर एंड अचीव अ बेटर टुमारो. सभी कलीग्स याशना, रेशमा, लीना, विदिशा, यशोदा, मिस्टर चीनिया एंड हैप्पी संडे विशेज सभी के लिए. दैट्स कमिंग फ्रॉम रीमा. ये हुई ना बात, काम करते हुए भी देखिए कितनी खुशी है. हमें भी अच्छा लगता है जब आप खुश होते हैं, तो बस इस खुशी को ऐसे ही बनाए रखिए बिकॉज वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए. सो आपके संडे में लगा रहे हैं थोड़ा सा रोमांटिक तड़का, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें, फ्रॉम द फिल्म बरसात. चलिए आप सभी के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक मैसेज नहीं पहुंचाया तो मैं कर रही हूं आपका इंतजार 5499-1294 पर. परी का साथ है टिल 4 PM ऑन रेडियो मस्ती.

Well, friends, that's your plug and play. हमारा साथ दे रहे हैं आप 2:50 Sunday afternoon and a beautiful Sunday afternoon. आप सभी का हम वेलकम कर रहे हैं. कहते हैं गाना हो जाए फॉर हस्बैंड पुष्कर एंड लोड्स ऑफ करेज टू ऑल हिज कलीग्स ऑफ पीटो पुलिस स्टेशन. इस वक्त काम कर रहे हैं वो. एंड कहते हैं प्यार सिर्फ एक लफ्ज नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो तुम. सेलिब्रेटिंग अ वेडिंग एनिवर्सरी टुमारो एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्टनर, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय लव ऑफ माय लाइफ. वेल, दैट्स कमिंग फ्रॉम वाइफ दिशा. सभी खिरोदर परिवार, गोदी परिवार हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम रिव्यू जोहांपा. एंड स्पेशल विशेज, लोड्स ऑफ लव, ये है फ्रॉम हस्बैंड पुष्कर एंड ये है उनकी प्यारी सी वाइफ दिशा की ओर से. उनके लिए भेज रही है प्यार एंड स्पेशल विशेज. कल सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी स्पेशल वेडिंग एनिवर्सरी, तो हमारी पूरी टीम की ओर से गुड विशेज एंड विशिंग यू मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस. बस ऐसे ही खूबसूरत मेमोरीज बनाते रहें. और कहते हैं हेलो रेडियो मस्ती, हमारा साथ कनेक्टेड है आपके साथ, ये हुई ना बात. हमें तो अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कहते हैं गाना हो जाए फॉर मॉम कविता, हस्बैंड नितेश एंड ऑल भगवान परिवार एंड इटवरिया फैमिलीज जो हमारा साथ दे रहे हैं. अनुषा पॉइंटो कानूनी से हमारा साथ दे रही हैं. सो गाना होगा फॉर योर स्वीट फैमिली. एंड कहते हैं हमारे घर में रेडियो मस्ती का स्वागत, क्या बात है. थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट. और संडे आफ्टरनून और साथ में गाना डेडिकेट करना चाहती हैं चार प्यारे प्यारे बच्चों के नाम जो स्कूल जाएंगे जल्द. और कहते हैं कि अभी तो हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं. और रिद्धि है, सोनाक्षी, निधि एंड लवली वंश. दैट्स कमिंग फ्रॉम दादी एंड नानी सुया बिहारी ऑफ कोंगोमा. उनके लिए भेज रही है बहुत सारा प्यार, अनलिमिटेड प्यार. दादी नानी तो होती ही इसीलिए क्योंकि इतना सारा प्यार जो हमें उनके तरफ से मिलता है, लगता है कि बस लाइफ में और क्या ही चाहिए. सो द स्वीटेस्ट दादीज एंड नानीज जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू. आपके लिए स्पेशल प्यार हम पहुंचा रहे हैं. एंड कहते हैं कि प्यारा सा गाना, इसे आप जरूर डेडिकेट करें फॉर स्पेशल फ्रेंड नीतू ऑफ पाल्मा कैटरबोन एंड विशिंग हर अ सेफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस. ये है राजीव सेंपिया से हमारा साथ दे रहे हैं और अपनी स्पेशल फ्रेंड के नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन. चलिए सभी के लिए जो अगला गाना है, इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे विथ योर प्लग एंड प्ले. मैं हूं परी आपके साथ 4 PM on RM2 रेडियो मस्ती.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस ने कारोबारों के लिए अफ्रीका संभावनाओं से भरी एक मंडी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की बदौलत व्यापार की रुकावटें कम हो रही हैं, जिससे निर्यात करने वालों के लिए नए मौके खुल रहे हैं। मॉरिशस महिला ठेकेदारों को इस समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदो में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के लिए 17.8 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। मकसद है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को गति देना। इस दिशा में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से ये संस्था पर्यावरण संबंधी डीएनए की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक जेनेटिक्स लैबोरेटरी स्थापित करेगी। निजी सेक्टर में आंखों के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण पार हुआ है। शुक्रवार को ईबेन में स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है। उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मॉरिशस में आंखों के इलाज में प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी देश में 2400 लोग कैटराक यानी मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रही हैं। और आपको एक ऐसे संगठन से वाकिफ कराते हैं जो पिछले लगभग 6 दशकों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए कार्यरत हैं। साकिम यानी सोसाइटी फॉर एड टू चिल्ड्रन इनऑपरेबल इन मॉरिशस, इस मॉरिशस नामक संगठन, ये एक मॉरिशस नामक संगठन है। ये संगठन विशेष इलाजों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में इस संगठन की पहल पर पहले इलाज प्राप्त कर चुके मरीजों के फॉलोअप के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 दिनों के दौरे पर मॉरिशस आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान पर नए हवाई हमलों की एक और श्रृंखला शुरू की है। ये कार्रवाई तब की गई जब तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि उसने अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है और अमरीकी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। ये जानकारी सरकारी मीडिया के हवाले से सामने आई। अमरीकी हमलों के कुछ ही घंटों बाद IOGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में स्थित एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वहीं अरब अमीरात, कतर, क्वैत और बहरीन ने भी ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के जवाब में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहे, सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। एमिल पीटो क्यूपिप में 85 साल की 85 years old की बीबी सामेरून रामजोनी पैदाश नाम कुदौत इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज 4:45 पर इनके मकान एमिल पीटो क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बिगा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4:45 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv. Plug and play. RM2. Plug and play.

और हम जानते हैं आपको भी याद है कि कैसे आपके लिए बस स्पेशल स्पेशल स्वीट स्वीट डेडिकेशंस होते हैं, स्वीट स्वीट गाने होते हैं ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती। बस अपने प्यार के साथ इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखिएगा। वार्म वेलकम आप सभी का, 3:09। मैं हूं परी आपके साथ। संडे आफ्टरनून, इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले। लेकर आए हैं कुछ ब्यूटिफुल ट्रैक्स आपके नाम। So taking you down memory lane with this beautiful track, Amit Kumar, Alka Yagnik ki awaazein. Hamare sabhi listeners jo hamara saath de rahe hain, enjoy this one.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: बस यही बात जमाने को बुरी लगती है. अक्सर हम यही तो सोचा करते हैं कि भैया ये हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग. अरे हम तो कहते हैं जिंदगी जीने का जो भी लुत्फ तो आपको उठाना है उसे उठा लीजिए. और लाइफ है, लाइफ मिलती है एक बार. जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं तब तक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस खुश रहिए और आस पास के लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए बस अपनी हैप्पीनेस के ऊपर आप फोकस करें. सो वेल फ्रेंड्स, साथ दे रहे हैं आप हमारा संडे आफ्टरनून में और मैं हूं परी आपके साथ लेकर आई हूं योर प्लग एंड प्ले. अभी के लिए तो कुछ प्यारे गाने हैं और साथ में आपका ब्यूटीफुल साथ. ऑन 5499-1294 कहते हैं घर पर है एंड एंजॉयिंग द मौसम एंड एंजॉयिंग द मोमेंट्स. ये हुई ना बात, आज पूरा परिवार एक साथ घर पर है और यहाँ पर शांति जी हमारा साथ दे रही हैं आप. और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना पूरे परिवार के नाम, सभी जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. एंड स्पेशली गोज आउट फॉर ऑल किशन दयाल परिवार जो लॉन्ग माउंटेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. गाना होगा आपके नाम. और चलिए हमारी HR टीम जो संडे को कर रही है बहुत सारा काम. अ स्वीट क्यूट डेडिकेशन टू वेलकम लिटिल प्रिंसेस राउतिया टू द वर्ल्ड एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम रीमा. साथ में है याशना, रेशमा, लीना, विदिशा, यशोदा, मिस्टर चीनिया, सभी साथ दे रहे हैं. इस वक्त काम करते हुए गानों को एंजॉय कर रहे हैं. सो हैव अ वंडरफुल टाइम. नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू ऑल. वी ऑल्सो हैव श्यामा, रितेश, रानी, तनिश, आदर्श, निष्ठा, जयश्री, याशना, सकील, युश्रा एंड वशिष, सभी परिवार, जीवन परिवार जो बेले से हमारे साथ कनेक्टेड है. होप यू एंजॉइंग योर संडे. और गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. प्रीतम जी आ गए हैं आप हमारे म्यूजिकल हमसफर बनकर और कहते हैं अपनी चाय एंजॉय कर रहा हूँ और अभी अभी काम से लौट कर आया हूँ एंड एंजॉइंग द टी टाइम. साथ ही आपका शो भी एंजॉय कर रहा हूँ. सो आई एम श्योर योर बेटर हाफ वर्षा भी इस वक्त आपके साथ है. सो आपको विश कर रहे हैं वंडरफुल संडे. हैव अ वंडरफुल म्यूजिकल टाइम RM2 रेडियो मस्ती के साथ. और गाना होगा स्पेशली आप दोनों के लिए. एंड वेल यहाँ पर कहते हैं गाना हो जाए फॉर ऑल

जसोदानंद परिवार ओके सभी जसोदानंद परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं ओके जी गाना आपके नाम एंड थैंक यू सो मच आपने इतने प्यार से ट्यून इन किया है सो मैं हूं परी आपके साथ साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 पीएम ड्रॉप इन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर अभी के लिए सिट बैक रिलैक्स वी हैव दिस ब्यूटीफुल सूदिंग गाना आपके नाम अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग ये स्पेशली हमारे सभी लिसनर्स के नाम

या पुराने वी हैव अ बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए अभी के लिए इट्स टाइम फॉर प्लग एंड प्ले मैं हूं परी आपके साथ टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ऑलमोस्ट पहली फिल्म्स ऑफ शाहरुख खान और उनके साथ द वेरी गॉर्जियस द वेरी ब्यूटीफुल दिव्या भारती चलिए उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं फ्रॉम द फिल्म दीवाना वी हैव दिस टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए जो जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ एंजॉय दिस वन

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay ou que vous soyez à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.

And well, friends, with this beautiful track, it's time for Pari to say goodbye. And jate jate Lalita Jeetan saath de rahi hain, aap enjoying garma garam coffee ghar par aur sabhi parivar ke naam. Dedicating this beautiful gana, Saroj Kumari, Veena, Geeta Gyanti, Sanjay Vijay aur sabhi Jeetan parivar. So have a wonderful time. Kumar Devichan saath de rahi hain aap. Dedicating gana for lovely Papa Shyam Devichan of Payback. Love you so much, Papa. Ye message hai aapke dearest Papa ke naam. And chaliye yahan par enjoy kar rahe hain aap. Selections ko naam nahi bataya aapne, lekin thank you so much for staying connected. रेडियो मस्ती के साथ विद दिस ट्रैक हम तो लेंगे अलविदा, लेकिन वादा रहा कि दोस्ती ऐसे ही निभाते जाएंगे. आ रहे हैं संजय लेकर कुछ और प्यारे गाने आपके लिए, सो उनका साथ दीजिए ऑन रेडियो मस्ती एंड हैव अ वंडरफुल संडे अहेड.

0: to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार आशिता जी के साथ नमस्कार।
6: नमस्कार संजय जी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के लिए 17.8 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। मकसद है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को गति देना। इस दिशा में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से ये संस्था पर्यावरण संबंधी डीएनए की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक जेनेटिक्स लैबोरेटोरी स्थापित करेगी। बात करें अब ऐसे संगठन के बारे में जो पिछले लगभग 6 दशकों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए कार्यरत है। साकिम यानी सोसाइटी फॉर एड टू चिल्ड्रन इनऑपरेबल इन मॉरिशस नामक ये संगठन विशेष इलाजों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में इस संगठन की पहल पर पहले इलाज प्राप्त कर चुके मरीजों के फॉलोअप के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 दिनों के दौरे पर मॉरिशस आए हुए हैं। निजी सेक्टर में आंखों के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण पार हुआ है। शुक्रवार को एबेन में स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है। उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मॉरिशस में आंखों के इलाज में प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी देश में 2400 लोग कैटराक्ट यानी मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में एक शक्तिशाली तूफान ने दस्तक दी है। ये एक सप्ताह के भीतर देश में आने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। तूफान के रास्ते में आने वाले इलाकों से लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बावी नामक इस तूफान का अधिकतम फैलाव लगभग 1000 किलोमीटर है, जो लगभग फ्रांस की चौड़ाई के बराबर माना जा रहा है। ये तूफान शनिवार शाम सबसे पहले तटीय शहर ताइजू से टकराया और इसके बाद आधी रात के आसपास वेंजाओ में दूसरी बार जमीन से टकराया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Plug and play.
3: RM2.
2: Plug and play.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: रेडियो मस्ती के सभी लवली लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर फेवरेट रेडियो स्टेशन। यहाँ पर आने के लिए आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इन द नॉर्थ, एंड आई टुक द वेडर रोड एंड आई ड्रोव टू मोका। माय गुडनेस, रास्ते में जो बारिश हो रही थी, जोरों की बारिश तो नहीं हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी, कोहरा भी छाया हुआ था, रास्ते उतने ब्लॉक तो नहीं थे। इट वॉज लवली ड्राइविंग, बट हम तो बस यही सोच रहे थे कि और बारिश हो। अगर हमारे पिताजी होते तो कहते कि मुस्ताधार बारिश और बरसो हमारे जलाशयों को और भरो। Anyway, all those driving and listening to Radio Masti right now, be careful on the road. Take your time, enjoy the ride, and enjoy the music on your number one radio station. Hey.

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ, आई विल सी यू इन द इवनिंग।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।
3: रेडियो मस्ती सुनते रहो।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 4:22, you're listening to Tuck Tuck Tuck Sanjay ke saath on the frequencies of Radio Masi. Play with MBC and stand a chance to win one ticket for the Golden 90s Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday 25th July 2026 as from 7:30 PM at SVICC Pi. Step into a world of nostalgia and relive the unforgettable voice that defined Bollywood's golden era. Ji ha, enjoy an enchanting evening of timeless melodies, legendary hits and pure musical magic. Tickets start from 850 rupees. Available at moticket.mu and Réseau Utayu. Don't miss this unforgettable concert experience. For reservations, you can call on the hotline 466-99-99. So इस एक टिकट को जीतने के लिए आपके समक्ष हम एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछने जा रहे हैं. And I know अगर आपको पता भी न हो, it will be very easy to go and look out for the answer. आप बताएं किस गाने के लिए, किस फिल्म के गाने के लिए अभिजीत भट्टाचार्य को एक फिल्म फेयर अवार्ड एक स्क्रीन अवार्ड भी हासिल हुआ था. किस गाने के लिए अभिजीत भट्टाचार्य जी को, जी हाँ, अभिजीत भट्टाचार्य को 1998 में फिल्मफेयर अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्मफेयर अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला था. दैट वाज बैक इन 1998. अपना नाम, अपना फुल नेम, अपना फुल पता, साथ ही साथ गाने के पहले शब्द आप लिखकर भेजें ऑन 5499294. एक दरख्वास्त है, अगर आपके अभी हाल में जीत हुई हैं, प्लीज गिव चांस to others to participate.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अभी अभी जो गाना हम चला रहे थे, इट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म मैं हूं ना, फिल्म जो आई थी साल 2004 में। इस गाने के लिए अभिजीत साहब वन ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक। लेकिन जो सवाल हमने आपसे किया था, किस गाने के लिए 1998 में अभिजीत भट्टाचार्य जी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला था और उसके साथ साथ स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक। और सही जवाब है फ्रॉम द फिल्म यस बॉस, गाना मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेजा, जितने भी लोगों ने भाग लिया आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने शर्त ये रखा था कि आप जवाब के साथ साथ अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता भी लिखें। लकी ड्रॉ करने के बाद जिनका नाम उभर कर आया एज द विनर ऑफ द वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य जी लाइव इन कंसर्ट ऑन सैटरडे 25 जुलाई 2026 एज फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC पाई। और जिस टिकट को कलेक्ट करने के लिए आपको MBC आना होगा अपने ID कार्ड के साथ। वो लकी विनर फॉर दिस टाइम इज मिस्टर अश्वन कुमार। यस, मिस्टर अश्वन कुमार फ्रॉम पुएर्टो पिमा, आपको बधाई हो। सो ड्यूरिंग द वीक आप आए बिटवीन 10 and 3 PM टू कलेक्ट योर टिकट्स। बधाई हो आपको एंड अ बेटर लक टू ऑल दोज। नेक्स्ट टाइम आप वैसे ही रेडियो मस्ती सुनते रहें। एंड हियर इज द सॉन्ग जिसके लिए अभिजीत जी को हासिल हुआ बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, दैट वाज 1998 फ्रॉम द फिल्म यस बॉस।

यू फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेजेस ऑन 5499294। किसी ने क्या खूब लिखा है, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी में काम कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया।

0: जिंदगी की किताब में हर पन्ना खास होता है, हर दर्द के पीछे एक एहसास होता है, जो मुस्कुराकर हर हालात से लर जाते हैं, जो मुस्कुराकर हर हालात से लर जाते हैं, उन्हीं का नाम इतिहास होता है। हमारे सभी ब्यूटीफुल लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक तक तक तक ऑन रेडियो मस्ती।
1: Music, Tak Tak Tak. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: I do hope you're enjoying your Sunday afternoon. रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए डिस्पैट द बैड वेदर, लेकिन इसे बैड तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम सबों को बारिश अच्छी लगती है, खासकर जब वो पानी लाती है हमारे रिजर्वॉयर्स के लिए. सो बरसते रहो और यूं ही सबको खुश करते रहो. और ओ आप भी अपने घर पर बैठे रहें, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग आउटसाइड, स्टे इनसाइड कोजी. Enjoy your tea and enjoy the music on Radio Masti. The next one is going to be lovely, I can assure you. Jo Anita ji ko bahut hi acha lagega, aap jo flux hai hamara saath nibha rahi hain. Likhte hain wow Sanjeev gaane to just wow. Enjoying them and cooking, wo likhte hain Ashwin Potwi se hamara saath nibha rahi hain, sending such beautiful pictures. Next gana going for Nandini ji. थैंक यू नंदिनी जी आपके इस मैसेज के लिए एंड फॉर योर फ्लावर्स. लेते हैं ये अगला मैसेज गोइंग फॉर विकास एंड हीना एंड विशिंग

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. Music, Dr.
1: RM2, Radio Musti.
2: Above everything, fashion should be fun. It should make you feel good. So if there's something that doesn't work for you, feel free to toss it out of the window. जो भी कुछ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं अच्छा लगता है किसी और पर रेट्रो स्नीकर्स इधर देखते हैं उधर देखते हैं इफ दीज मस्ट हैव आइटम्स डोंट फील ट्रू टू हु यू आर देन यू डोंट नीड टू वेयर देम इन ट्रूथ देयर इज नो सच थिंग एज हार्ड एंड फास्ट फैशन रूल बस क्योंकि इस तरह ने पहना है या उस तरह ने पहना है दैट यू नेसेसरी नीड योर ओन ब्लेजर ओ किसी सीजन फैशन एडिटर ने ये कहा है कि आप थोड़ी सी नाटी हैं या तो थोड़ी सी लंबी हैं आप पर ये जचेगा दैट डजंट मीन दैट यू शुड वेयर दैट ओ

0: That doesn't mean that you're wrong for not missing a blazer or for adoring billowy, shapeless trucks. Tips, tricks, hacks, and even supposed rules can only be incredibly helpful agar you feel happy in what you are wearing. क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फीलिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ कॉन्फिडेंट यू फील इन व्हाट यू आर वेयरिंग, जो सबसे अहम रखता है कि जब आप निकलते हैं तो योर वेयरिंग योर फैशन एड्स टू योर पर्सनालिटी एड्स टू योर कॉन्फिडेंस. ऐसी स्थिति में जो भी कुछ आप करने निकलेंगे उस पहनावे के साथ उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Music, Tak Takata.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: शाम के 6 बजे में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। यहाँ पर पूनम जी का मैसेज आया, लिखते हैं इस मौसम को देखकर उन्हें अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ रहे हैं एंड शी इज मिसिंग हर हिंदी लेक्चरर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू पूनम जी साथ निभाने के लिए एंड आई डू होप कि जहाँ पर भी होंगी आपकी एक्स लेक्चरर वो बहुत ही खुश होंगे और ये जानकर कि उनकी एक छात्रा अभी तक उनको याद कर रही हैं। I suppose she would be very very happy. चलिए अगला गाना लेते हैं अनिता जी के लिए जो फिकम फ्लाक से हमारा साथ निभा रही हैं। थैंक यू अनिता जी। वो कहती हैं जब फुटबॉल देखती हैं और किसी टीम को हारती हुई देखती हैं तो उसे भी बहुत रोना आता है। क्या कह रही हैं अनिता जी, ये तो फुटबॉल की रीत है। सो नेक्स्ट गाना जाता है हेमा बिसू जी के लिए फ्रॉम रेजिडेंस केनेडी कैटरबोन। उनकी माँ शमीला, पापा मनोज, सिस्टर डिंपल, बेटी नवीश के लिए एंड फॉर द होल मोहन फैमिली थैंक यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर मम रेशमा जागेसाव फ्रॉम फ्री डॉटर्स वर्षा, रक्षण, लवना, अभी संजय, दामाद यशवीन एंड ग्रैंड डॉटर मिशिका की ओर से ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मामा जी। Next, I'm going for Sheetal and Vicky celebrating their wedding anniversary yesterday, celebrated yesterday. Wishing them lots of love from the DL family of Motain Blanche. और साथ ही साथ ही अगला गाना जाता है माला जी के लिए जो बहुत ही प्यार से हमारा साथ निभा रही हैं फ्रॉम बसन रोड कटरबोन।

0: बाला जी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है, यादों के संसार में एक पल हमारा हो, खिलते मुस्कान में एक एहसास हमारा हो, जब याद आए आपको अपनी दोस्तों की, उन यादों में सबसे पहले हमारा नाम हो।
1: म्यूजिक टक टक टक
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: थोड़ी देर में सुनते हैं समाचार और समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी ऑन रेडियो मस्ती।

0: घरे मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। बारह जुलाई रविवार का दिन, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहली बार के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की एक उड़ान आज दिन के 3:15 पर मॉरिशस पहुंची। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये प्रथम सीधी उड़ान मॉरिशस और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व में चल रहे संकट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब एकजुट रहे, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज रोड्रिग संस्कृति दिवस के 10वें संस्करण के समारोह के मौके पर कही। इस समारोह के अंतर्गत खान पान, हस्तशिल्प, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं के जरिए रोड्रिग्स की संस्कृति प्रस्तुत की गई। मॉरिशन महिला ठेकेदारों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदाओ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। समुद्री शैवाल यानी सीवी डाइट सेहत और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संसाधन साबित हो सकता है। इस बुलेटिन में मुलाकात यूनिवर्सिटी मॉरिशस में एक युवा शोधकर्ता के साथ। वे पिछले साल से मॉरिशन लगूनों में पाए जाने वाले खाने योग्य समुद्री शैवाल पर काम कर रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ा। ईरान ने तुरंत होमुज जलमार्ग बंद किए जाने की घोषणा के बाद वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर आज गोलीबारी की। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ शुरू करते हैं। पहली बार के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की एक उड़ान आज मॉरिशस पहुंची। ये विमान अदिस अबेबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5.5 घंटे की सीधी उड़ान पर यहां आया और दिन के 3:15 पर प्लेजोंस हवाई अड्डे पर उतरा। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये प्रथम सीधी उड़ान मॉरिशस और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व में चल रहे संकट से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब एकजुट रहे, ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज रोड्रिग संस्कृति दिवस के 10वें संस्करण के समारोह के मौके पर कही, जहां वे मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए। इस गतिविधि का आयोजन मूवमेंट सोलिडारिटे रोड्रिग द्वारा लातुकेनिक के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में किया गया। उपस्थित लोगों को खान पान, हस्तशिल्प, संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं के जरिए रोड्रिग्स की संस्कृति को बेहतर जानने का मौका मिला। लातुकेनिक में आज लगे समारोह के अंतर्गत प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल पोर्ट लुइस में श्रमिक संघों द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मार्च पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है और वे इसका सम्मान करते हैं। सेंट्रल एलएसटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रहे हैं, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती हैं। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। मॉरिशन कारोबारों के लिए अफ्रीका संभावनाओं से भरी एक मंडी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की बदौलत व्यापार की रुकावटें कम हो रही हैं, जिससे निर्यात करने वालों के लिए नए मौके खुल रहे हैं। मॉरिशन महिला ठेकेदारों को इस समझौते का पूरा फायदा उठाने में मदद करने के लिए 8 और 9 जुलाई को कुदाओ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत उन्हें अफ्रीकी बाजारों में जगह बनाने के लिए तैयार किया गया। इस पर अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
1: रिविया जुहापो स्थित फिट यू गार्मेंट के लॉन्चिंग के साथ जेनी पिज्याल को उच्च किस्म के मॉरिशन टेक्सटाइल के भविष्य को लेकर भारी उम्मीदें हैं। उनके सामान पहले से ही प्रसिद्ध ग्राहकों की ओर निर्यात किए जाते हैं। आज अफ्रीका इस कारखाने के लिए एक अहम मंडी बनी हुई है, जहां पर 100 से अधिक लोग काम करते हैं और प्रति महीने करीब 1,00,000 कपड़ों का उत्पादन होता है। फिच्यू गवर्नमेंट की संस्थापिका एवं निदेशिका जेनी पिज्जाल ने कहा, निर्यात पर बिजनेस शुरू किया, पहले तो रेनियन की ओर निर्यात शुरू हुआ, फिर दक्षिण अफ्रीका। हम अफ्रीकी मंडी में बने रहना चाहते हैं क्योंकि अफ्रीका पड़ोसी देश है, इस पर मुख्य ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि ज्यादा ऑर्डर मिल सके। AFCTA के जरिए सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी संभावना है, जिन्हें इससे लाभ उठाना चाहिए। मौके से फायदा उठाते हुए अफ्रीका में रहकर अफ्रीका में निर्यात करते रहें। मॉरिशस अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया AFCTA का एक सदस्य है और इसके आगमन से महिला ठेकेदारों के लिए नई संभावनाएं पेश हो रही है। इससे व्यापार में काफी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी में कमी, 1.4 बिलियन से अधिक के उपभोक्ताओं के लिए मंडी में प्रवेश पाना और साथ में अफ्रीकी निर्यात को प्रोत्साहन मिलना, जैसे कि हाई वैल्यू एडेड के अंतर्गत उत्पन्न पदार्थ आदि। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से विदेश मंत्रालय और UNDP के सहयोग से पिछले 8 और 9 जुलाई के बीच कुदो में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मकसद महिलाओं द्वारा संचालित मॉरिशन कंपनियों को तैयार करना ताकि उन्हें बेहतर तरीके से इलाकाई वैल्यू चेन में सम्मिलित किया जा सके और AFCFTA की ओर से प्रदान लाभों से फायदा उठा सके। मंत्री रितेश रामफल ने कहा, एकमात्र समझौता है जिसमें महिला ठेकेदारों के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है, इसमें कई बातें हैं जो महिलाओं के लिए लागू हैं। ज्यादा संभावनाएं हैं, जैसे कि जब कोई महिला लोन लेने जा रही हो तो पुरुषों की तुलना में ज्यादा कठिन है। ये सब है इसमें, जिससे महिलाओं को मदद मिल सकती है, इस समझौते से फायदा उठा सकती है और युवकों के लिए भी। मॉरिशस में UNDP की प्रतिनिधि अर्का भाटिया ने कहा, प्रशिक्षण के माध्यम से, फाइनेंस उपलब्ध कराने के माध्यम से और मंडियां उपलब्ध कराने के जरिए महिला ठेकेदारी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। EDB शी ट्रेड्स मॉरिशस हब की निदेशिका निर्मला जीता ने कहा, ज्यादा जानकारियां दे रही हैं ताकि महिला ठेकेदार व्यवसाय नियमों को समझ सके, जरूरतों के बारे में जान सके और अफ्रीका महाद्वीप की संभावनाओं के बारे में जान सके, क्योंकि अभी बहुत महिलाएं नहीं हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप की ओर निर्यात कर रही है। EDB महिला ठेकेदारों को अफ्रीकी मंडियों में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयासों में उनकी मदद करेगा। बजट 2026-2027 में घोषित पहल के अंतर्गत भी ऐसा किया जा रहा है, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि देश की आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की दिशा में कोशिशें बढ़ाई जाए।
0: चलिए आज आपको एक ऐसे संगठन से वाकिफ कराते हैं जो पिछले लगभग 6 दशकों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए कार्यरत हैं। साकिम यानी सोसाइटी फॉर एड टू चिल्ड्रन इनऑपरेबल इन मॉरिशस नामक का ये संगठन विशेष इलाजों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर निर्भर करता है। इसी सिलसिले में इस संगठन की पहल पर पहले इलाज प्राप्त कर चुके मरीजों के फॉलोअप के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर 3 दिनों के दौरे पर मॉरिशस आए हुए हैं। संतना पूंसनो की रिपोर्ट पर गीता सोनान का विवरण।
2: इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे अक्सर बीमारी के खिलाफ लंबा संघर्ष छिपा होता है। लगभग 60 वर्षों से साकिम जटिल बीमारियों से पीड़ित मॉरिशस के बच्चों की मदद कर रहा है और उन्हें ऐसे विशेष उपचारों तक पहुंच प्रदान कर रहा है जो शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाते। जन्म से ही यहाँ मेरी देखभाल होती है। अब 25 साल का हूँ, कई ऑपरेशन किए हैं, अब सीधा बैठ सकता हूँ। अगर वे नहीं होते तो मैं व्हीलचेयर पर रहता। अगर साकिम की मदद से मेरा ऑपरेशन नहीं होता तो मैं पलंग पर ही रहता, आम बच्चों की तरह नहीं चल पाता। परिवारों के लिए ये सहायता केवल इलाज तक सीमित नहीं है, ये सहयोग अपने बच्चों को फिर से सामान्य जीवन जीते देखने की उम्मीद है। साकिम की बदौलत मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, उसे एक नया जीवन मिला। ये मिशन उन विशेषज्ञों की बदौलत संभव हो पाया है जो अपना समय और अनुभव समर्पित करते हैं। 3 दिनों की यात्रा पर मॉरिशस आए ये भारतीय चिकित्सक साकिम के साथ लंबे समय से चल रही साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पुराने लाभार्थियों की चिकित्सा निगरानी की जा सके और नए बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके। बेंगलोर के स्पर्श अस्पताल के डॉक्टर नवीन तहसीलदार कहते हैं, 2014 से मैं साकिम से जुड़ा हुआ हूं। डॉक्टर अमृत राजकुमार की बदौलत ये शुरुआत हुई। हर बार यहां आता हूं तो इन बच्चों को देखता हूं। कुछ की शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहने के बावजूद साकिम लगातार लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। साकिम की उपाध्यक्ष डॉक्टर नीना दुहिता रामदनी कहती हैं, पहली बार आने पर बच्चे का उम्र 18 साल से कम की होनी चाहिए। हम उन अभिभावकों से मांग करते हैं जिनके बच्चों को कोई समस्या है, वे हमारे पास आएं। माता पिता दोनों के वेतन मिलाकर 1,00,000 रुपए से कम होने चाहिए। हम उनकी सामाजिक रिपोर्ट बनाते हैं जो सरकार के एक प्रोबेशन अफसर द्वारा तैयार की जाती है। 1968 से अब तक साकिम ने 764 बच्चों की सहायता की है और मॉरिशस तथा विदेशों में 967 विशेष चिकित्सा प्रक्रियाओं को संभव बनाने में योगदान दिया है। इन आंकड़ों के पीछे अनेक जीवन यात्राएं, राहत महसूस करने वाले परिवार और वे बच्चे हैं जिन्होंने फिर से उम्मीद पाई है।
0: ठेकेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में मराठी कंसल्टेटिव काउंसिल एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मराठी चेंबर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स की लॉन्चिंग के साथ मॉरिशस में मराठी समुदाय के ठेकेदारों और महाराष्ट्र के व्यवसायियों के बीच सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। अश्मिता बंटू की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
1: कारोबार का एक वास्तविक नेटवर्क कायम करना और मराठी समुदाय में ठेकेदारी की संस्कृति प्रोत्साहित करना मराठी चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के यही उद्देश्य हैं। 100 से अधिक ठेकेदारों ने मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की सीट पर लगे फोरम में भाग लिया। कंसल्टेटिव समिति के सदस्य ज्ञानदीप मुचा ने कहा, कई व्यावसायिक एवं पेशेवर हैं जो कार्यरत हैं, अतः इस तरह का संगठन उन्हें संगठित करने का एक मंच है ताकि कार्यशालाएं आयोजित की जा सके, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभावनाएं प्राप्त हो सके, अलग अलग अनुभव प्राप्त हो सकेंगे, वे अपने खुद के बिजनेस को भी विकसित कर सकेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के कंपनी प्रमुखों ने मौके से फायदा उठाते हुए अपना अनुभव बांटा और साथ में सहयोग की नई संभावनाएं विकसित करने की विशेषज्ञता भी मुख्य रूप से व्यवसाय निर्यात और छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योगों को लेकर। अनंता वेलनेस के संचालक विमला तानू ने कहा, महिलाओं को बिजनेस में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, काफी सहायता मिल रही है, कार्यशालाएं हो रही हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है, भारतीयों के साथ नेटवर्क भी प्राप्त होता है। विस्टाकॉम के सीईओ संजीव मल्लू ने कहा, आर्थिक स्तर पर ये बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रों के साथ संपर्क में रहें। यहाँ मॉरिशस में एक छोटी मंडी है, ये जरूरी है कि भारत में राष्ट्रों के साथ संपर्क कायम करें, जो कुछ भी सीख रहे हैं अफ्रीका की ओर इसका इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में सदस्य कंपनियों की गतिविधियों और प्रोफाइल्स को संगठित करने वाला एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जाएगा। कई पहल का ऐलान किया गया है जिनमें एक मराठी यूथ फेडरेशन कायम करना शामिल, जिसका मकसद है समुदाय में ठेकेदारी को बरकरार रखने की बात को बढ़ावा देना और नौजवानों को भी प्रोत्साहित करना।
0: निजी सेक्टर में आंखों के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चरण पार हुआ है। शुक्रवार को बेन में स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी में विशेषज्ञता रखता है। उद्घाटन समारोह में मौजूद हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मॉरिशस में आंखों के इलाज में प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अभी देश में 2400 लोग कैटराक यानी मोतियाबिंद की सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। दैविक राजकुमार की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
2: आंखों की समस्याओं रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स को मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ ठीक करने वाली अत्याधुनिक तकनीक ये लेजर आधारित उपकरण उपचार की अवधि को कम करने में मदद करता है। ये प्रणाली एबेन स्थित आंखों के विशेष निजी चिकित्सा संस्थान स्पेक्ट्रा आई हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। अस्पताल के अध्यक्ष और स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूरज मुंजल कहते हैं,
3: refractive errors are broadly of three types. One is a myopia, One is hypermetropia and the third one is astigmatism.
2: Refractive disorders तीन वर्गों में विभाजित हैं। ये उपकरण इन समस्याओं को दूर कर सकता है।
3: And if there is a combination of these refractive errors and the results are very very good.
2: अब तक 10 मरीज इस तकनीक का लाभ उठा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में इस संस्थान ने लगभग 1000 ऑपरेशंस किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र का योगदान पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं, वर्तमान आई हॉस्पिटल में 2400 मरीज कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी डॉक्टर ला रहे हैं, एक महीने में सभी ऑपरेशन पूरा कर देना चाहते हैं। अस्पताल में इन्हें पूरा नहीं कर सकते। हम मॉरिशस में प्राइवेट अस्पतालों से कोटेशन मांगते हैं। आँखों की स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए इस संस्थान को कोनिया ट्रांसप्लांट करने की भी अनुमति प्राप्त हो गई है।
0: राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के लिए 17.8 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। मकसद है ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र को गति देना। इस दिशा में भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से ये संस्था पर्यावरण संबंधी डीएनए की निगरानी के लिए एक आधुनिक जेनेटिक्स लैबोरेटोरी स्थापित करेगी। ये पहल समुद्री संसाधनों की मैपिंग करने वाली परियोजना का हिस्सा है। अब तक मॉरिशस समुद्री क्षेत्र में लगभग 200 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। मॉरिशनों के दिमाग में खाने की चीजों के तौर पर शायद समुद्री शैवाल यानी सीवीड का ख्याल सबसे पहले न आए, फिर भी ये हमारे डाइट, सेहत और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संसाधन साबित हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में एक युवा शोधकर्ता दृष्टि देवीदास पिछले साल से मॉरिशन लगूनों में पाए जाने वाले खाने योग्य समुद्री शैवाल पर काम कर रही है। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
1: पिछले साल से मॉरिशस विश्वविद्यालय में अनुसंधान करने वाले दृष्टि देवीदास मॉरिशन समुद्रों में अभी तक अज्ञात समृद्धियों के बारे में दिलचस्पी दिखा रही है। अपने खोज कार्यों के अंतर्गत उन्हें खाने योग्य 10 से अधिक प्रकार के एल्गी का पता चला। इन्हें मुख्य रूप से देश के दक्षिण में पोर्टोफोय में बरामद किया गया। विश्लेषणों से उत्साहजनक नतीजे प्राप्त हुए हैं। ये शैवाल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर है। इसके अलावा इनमें हैवी मेटल्स की कम ही मात्रा है। पूर्ण रूप से सुरक्षा पूर्वक इनके सेवन के लिए अहम तत्व।
4: Maurice n'a pas ce qui se 400 variétés qui n'est fini découvert. Mais pour l'instant, on travaille avec une dizaine de seaweed qui m'ont trouvé des safe to consume et aussi c'est bien riche en ben vitamines et ben antioxydants. Et ça, l'étude qui m'ont fait là, il y a un peer reviewed journal et que c'est une preuve qui est ben seaweed et un antioxydant et aussi ben métaux lourds de ben seaweed et qui est bien bas. En plus de ça, on analyse ben carbohydrates, ben protéines et ben iron qui nous est dans le seaweed et un ben certain seaweed surtout ben algues rouges c'est bien riche en protéines.
1: इनके पोषण गुणों के अलावा ये शैवाल मॉरिशस के लिए नई संभावनाएं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया,
4: nous pouvons créer un food product et après ça nous capable commercialise produit là, capable export ça man seaweed là, nous capable créer un food product avec banana avec nous exported et aussi pour aider dans l'aspect food security de Maurice et aussi pour nous l'économie.
1: इन स्थानीय प्रजातियों और इनकी क्षमता के बारे में अधिक बेहतर रूप से समझने के लिए उनके कार्य जारी है। मकसद है देश के लिए इस वास्तविक संभावना के बारे में जाना, इस प्राकृतिक संसाधन को परिवर्तित करना और मूल्य बढ़ाना।
0: तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रिन्यू किया गया। और उधर मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने तुरंत होर्मुज जलमार्ग बंद किए जाने की घोषणा की है। वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर आज ईरान की तरफ से गोलीबारी की गई। इसके जवाब में अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। अदिति अवतार का विवरण।
2: रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट अगली सूचना तक और इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई समाप्त होने तक बंद रहेगा। जिस जहाज ने इस इलाके से गुजरने की कोशिश की और जो ईरानी हमले का निशाना बना, उसे उसके चालक दल ने आग की लपटों में घिरा छोड़ दिया। नई दिल्ली के अनुसार हमले का शिकार बने इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इस व्यापारी जहाज पर हुए हमले के बाद अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान में लगभग 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और कतर की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशक दर ने आज अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराकची के साथ टेलीफोन पर बात के दौरान तनाव कम करने की अपील की और सभी पक्षों से संयम बरतने की मांग की।
0: बात करें अब फीफा विश्व कप के बारे में। कल रात मायमी के हार्ड रॉक स्टेडियम में इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 2-1 के स्कोर से हराकर 2026 विश्व कप की सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब थ्री लायंस का मुकाबला सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना के साथ होगा, जिसने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। ज्यादा जानकारी अरविंद विशेषर दे रहे हैं।
5: मुश्किल ही सही, पर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया। नॉर्वे की टीम के सामने इंग्लैंड का काम आसान नहीं था। अंत तक लड़ते रहे द वाइकिंग्स। शुरुआत नॉर्वे की बेहतर रही। 36वें मिनट पर स्कैंडिनेवियन टीम के लिए गोल स्कोर करता है शेल्डेरूप। तुरंत बाद द थ्री लायंस के लिए जूड बेलिंगम मैच बराबर पर लाता है। दूसरे भाग में इंग्लैंड को कई अच्छे मौके मिले, पर निर्धारित 90 मिनट में गोल नहीं बने। एक्स्ट्रा टाइम में इंग्लैंड अपना दबदबा बरकरार रखता है और परिणाम उसी के हक में रोजर्स के जोरदार शॉट पर नॉर्वे का गोलकीपर चकमा खा जाता है। गेंद सीधे बेलिंगम के यहां, कोई गलती नहीं, बेलिंगम का डबल। इंग्लैंड की जीत 2-1 से। अब 15 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड के सामने होगा, मेसी का अर्जेंटीना। ये मैच रात्रि के 11 बजे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर सीधा प्रसारित किया जाएगा।
0: बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर। आम हालत, उत्तर पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को कल सुबह से प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज शाम और रात के दौरान ऊंचे इलाकों में विशेषकर बारिश होगी। कल सुबह पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर विशेषकर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और थोड़ी वर्षा होगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के जुआर उठेंगे। खुले समुद्र में विशेषकर पश्चिम और दक्षिण वाली लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। कल दोपहर बाद पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों की स्थिति में सुधार आएगी तथा तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:45 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:45 पर।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रही, कुछ देर में हम सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बॉम्बे स्ट्रीट पेटी राफे में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रानी रघुबा, पैदाशना मीतन और जिन सुनीता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके पति सचिदानंद रघुबा के घर पेटी राफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। टेलफेयर एवेन्यू कैट्रबोन में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती बेनी प्रसाद पैदाशम बीरबल और जिन्हें माजिन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनके बेटे अनी बेनी प्रसाद के घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:45 AM। मामजेल जान रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती मितन पैदाशाम बहादुर और जिन्हें तारा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 उनके बेटे श्याम मितन के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूर गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM। लारू मागू पोर्ट लुइस में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की फातमा जीवा पैदाशनाम सईद और जिन्हें फातमा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले वुलसी पुनी पोर्ट लुइस की रहने वाली थी, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज रात 8:00

0: जी इनके मकान पोर्टली से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जा जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8 PM। इंपास फ्रेडरिक बोनफिन क्यूपिप में 100 साल की 100 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीनाक्षी बिसेसो, श्रीमती मीनाक्षी बिसेसो पैदाशा मुत्ती और जिन्हें अकाफी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर बोनफिन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। एमिल पीटो क्यूपिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की बीबी साबेरून रामजोनी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 4:45 पर उनके घर से उठाकर दफनाने के लिए बिगा का कब्रस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल टुडे एट 4:45 PM। रामपेसाद स्ट्रीट और ग्रीमोसियाल ओकुले में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री योगेश जवाला पेसन जिन्हें योगेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनकी माँ मीता मायापत के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेगनो वाकुआ शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:45 AM। एवेन्यू डेलिस कानूट अल्बियो में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री नवीन दत्त लुफो जिन्हें मेरी लाल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर अल्बियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बुक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। बंगाली रोड बुसोंज में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री शिवराज भो जिन्हें शिवराज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी माँ लक्ष्मी भो के घर भूसोंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैपिया बॉम्बुक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। वी आर एस दो रुसो दे डेलिस विलनुआ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री अमरीका सिंह ओबिलक सिंह जिन्हें बाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके दामाद कालीदीन राजीव के घर विलों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सीधे थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेश मर्दे जो वियो रेस्टोरेंट के मालिक थे और जिन्हें पापों के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
4: Music, tuk-tuk-tuk.
5: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: राधे राधे नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ 6:37 हुए एंड टाइम टू प्ले विद एमबीसी and win and stand a chance to win one ticket to the Golden 90s Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday 25th July 2026 from 7:30 PM at SVICC Pi. Yes, stop into world of nostalgia. Relive the unforgettable voice that defined Bollywood's golden era. Enjoy an evening of timeless melodies, legendary hits and pure musical magic. Tickets start from 850 rupees and are available at muticket.mu and on Réseau Otayo. Don't miss this unforgettable concert experience. For reservations, you can call on 466-9999. तो अगर आपको ये टिकट जीतना है तो हमें इस अगले सवाल का जवाब लिख भेजें साथ साथ में अपना नाम पूरा नाम और पूरा पता आप हमें बताएं विच वॉज द फर्स्ट सॉन्ग दैट अभिजीत भट्टाचार्य सांग फॉर शाहरुख खान आसान बहुत ही आसान विच वॉज द फर्स्ट सॉन्ग दैट अभिजीत भट्टाचार्य सांग फॉर शाहरुख खान आपका जवाब आपका आपके नाम और आपके आपके पते के साथ ऑन 5499 1294 अगर आपकी जीत हुई है

देखते ही देखते अनुराधा पोरवाल और अभिजीत की आवाजें फ्रॉम द फिल्म तुम बिन जो साल 2001 में रिलीज हुई थी. हमने आपसे पूछा था वो कौन सा गाना था इन विच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अभिजीत सैंग फॉर शाहरुख खान और जवाब है इन द फिल्म अंजाम बड़ी मुश्किल है. आसान बहुत ही आसान सा प्रश्न था, मुश्किल नहीं था टू फाइंड एंड द आंसर. लेकिन जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया और जो जीतते हैं वन टिकट फॉर द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट नेक्स्ट सैटरडे 25 जुलाई 2026 के लिए आज फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC. जिन्होंने ये टिकट जीता और जिसको हासिल करने के लिए आपको अपनी आईडी के साथ आईडी कार्ड के साथ MBC आना होगा आदर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, वो लकी विनर हैं. हेमा तिलकधारी फ्रॉम सेकोस्टांस सेंट पियर.

ये गाना आता है फिल्म अंजाम में जो रिलीज हुई थी 1994 में और इस फिल्म में काम किया था माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान ने। सो बधाई टू हेमा जी, आपको एमबीसी आना होगा ड्यूरिंग द वीक बिटवीन 10 एंड 3 पीएम टू अवेल ऑफ योर टिकट। कांग्रेचुलेशंस।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: जी डियर लिसनर्स, रात के 7 बजे में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। हमारे दोस्त निखिल भी आ चुके हैं आपका साथ निभाने। यू डू हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड लेट इट रेन कि कल सुबह को बारिश ना हो, सभी बच्चे स्कूल ठीक तरह से जा पाए और सभी काम करने वाले भी अपने अपने काम पर आराम से पहुंच पाए। So I'll be yours once again next Sunday, as from 4 p.m. Till then, take good care of yourselves. हमें आज्ञा दीजिए। Love you and bye-bye.

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: नमस्कार मॉरिशस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त निखिल, और इस वक्त अगर पूरी दुनिया पर किसी चीज का जादू है तो वो है वर्ल्ड कप फीवर। हर तरफ बस फुटबॉल का चर्चा, कौन जीतेगा, कौन बनेगा चैंपियन। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए, अगले दो घंटों के लिए हमारा टीम सेम है, विल बी टीम बॉलीवुड, क्योंकि चल रहा है आपका अपना बॉलीवुड सिज़ला ओनली on RM2.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जा रविवार की शाम है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा गुनगुनाइए और थोड़ा हमें भी बताइए कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ हमारे पूछने से पहले काफी सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच चुके हैं। We'll start with this very special one. A very, very, very happy birthday to Shan, and that goes out from Bisesa and Govinda, from his wife Keshni and two sons Laksh and Tavish of Mocha. Shan जी को बोलेंगे happy birthday Shan से। साथ ही साथ ये अगला गाना हम करने वाले हैं सुषमा बिगन फ्रॉम कैथोकोको, मनीष अमर राजा बानी जिसे फैमिली कुबलाल फैमिली फ्रॉम रिविया जोआ पाओ के नाम, और आप सभी आप तमाम सुनने वालों के नाम, आप हमारा पहला इश्क भी हो।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, कहते हैं कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। वो जो मेहनत करते हैं उनको उनका मकाम हमेशा मिल ही जाता है। इसलिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे उन सभी का जो अभी भी काम कर रहे हैं। आपके काम करने से हम रिलैक्स कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम करेंगे ये अगला गाना खास आपके नाम।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, आपने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है तो आपको बता दें दैट यू लिसनिंग टू बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन RM2। मैं हूं निखिल और आप अब पढ़ने वाला हूं आपके प्यारे प्यारे कुछ मैसेजेस। जी हाँ, ये पहला मैसेज आया है, अपना नाम तो नहीं लिखा है सत्यम भाई ने, लेकिन हमें पता चल गया। जी हाँ, कसम खा ली, लवली सॉन्ग, वेरी रेयरली प्लेड। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन कितना बढ़िया गाना है ना। ये अगला गाना हम करेंगे ऋषि विदेशी और बॉम्बू के नाम, साथ ही साथ रोशन फ्रॉम काउंट मास्क पावे इज डेडिकेटिंग द अपकमिंग सॉन्ग टू हिज लव सिमी एंड विशिंग एवरीवन अ हैप्पी वीकेंड। यहाँ ये अगला गाना हम साथ ही साथ करेंगे दागेन श्वेता रवीश प्रिशा लवशा एंड अबाडू फैमिली ऑफ वोशनोआ के नाम, और ये ही गाना हम डेडिकेट करने वाले हैं दीपिका फ्रॉम गौसा और उनके पति देव सन आयुष एंड डॉटर अवनी के नाम। जी हाँ, कितने सारे डेडिकेशंस और एक बेचारा गाना, और वो गाना भी क्या, वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम द मूवी कम बख्त इश्क। क्यों

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आज की बिजी जिंदगी में हम सब किसी ना किसी रेस में भाग रहे हैं, है ना? काम की रेस, जिम्मेदारियों की रेस, टेंशन की रेस, स्ट्रेस की रेस, सब कुछ बस चलता रहता है। लेकिन कभी कभी बस इतना जरूर करना, अपनों के साथ बैठकर दो बातें कर लेना, खुद अपने साथ बैठकर चंद सांसें ले लेना, ये भी बहुत बहुत जरूरी होता है। शायद इस अगले गाने पर आप यही कर सकते हो।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, अब शाम जो है वो रात में घुल गई है, लेकिन हमारा बॉलीवुड सिज़लर इज स्टिल ऑन. जी हाँ, वेलकम टू द सेकंड आवर ऑफ बॉलीवुड सिज़लर ओनली ऑन RM2. जिनको पता नहीं उनको बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त निखिल. अगले कुछ वक्त तक हम साथ रहेंगे कुछ बेहतरीन बॉलीवुड गानों के साथ, आपके फरमाइशों के साथ और मेरी रूहानी बातों के साथ. जी हाँ, इस राउंड में, इस सेकेंड आवर में आई बी टेकिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, लेकिन मुझे वो चाहिए जो रेडियो पर यूजुअली बजते नहीं. वो ऐसे कुछ ऐसे गाने जो चलाए नहीं जाते कभी रेडियो पर, वो चला कर देखते हैं क्या होता है. या दिस फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी भूत बंगला इज वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर द टाइम बींग, इन द वॉइस ऑफ जावेद अली, श्रेया घोषाल एंड पृथ्वी गंधर्व. कुछ सेमी क्लासिकल फ्यूजन. आई होप यू लाइक इट.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, इश्क तेरा ले डूबा इन द लवली वॉइस ऑफ सुनिधि चौहान। ये सुनकर आपसे कहने का मन कर रहा है कि आज अगर किसी चीज में हार मिली है ना, तो उदास मत होइए। हर हार के अंदर एक सीख छुपी होती है। जो इंसान गिरकर दोबारा खड़ा होता है, वही अपनी असली ताकत पहचान पाता है। आपकी मेहनत और आपका हौसला हमेशा आपका साथ देता है। या आपका हौसला और बढ़ाने के लिए वी स्टिल हैव वन आवर। अगर आपके पास कोई भी डेडिकेशन है, कोई भी फरमाइश, 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर। हम आपके पैगामों के लिए बहुत बहुत बेकरार हैं। और ये पहला गाना हम करेंगे अक्षय भाई के नाम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कहेंगे सेफ जर्नी, अगर आप घर पर जा रहे हैं तो सेफ जर्नी बैक होम। जहां आपका इंतजार कहीं ना कहीं तो हो रहा है, इसलिए सावधानी के साथ आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बस अपना स्पीड कंट्रोल में रखिए। ये अगला गाना हम आपके नाम करते हैं।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: एक अच्छा गाना बस आवाज और सुर नहीं होता, वो एक एहसास होता है, उसमें याद जीते हैं. आपकी याद को ताजा करने के लिए दिस नेक्स्ट वन फ्रॉम द मूवी रंगील, फ्रॉम द एल्बम रंगीली बाय कैलाश. कैलाश खेर की आवाज में तू क्या जाने.

0: Hollywood radio station.
1: कुछ अपना लिखा हुआ पेश करना चाहता हूं। अर्ज किया है, मंजिल की मालूमात उसे पहले कदम से थी मगर, मंजिल की मालूमात उसे पहले कदम से थी मगर, वो जानकर रास्ता भी मेरा राह बर ना बन सका। मेरे ख्वाबों का नक्शा था उसी की निगाहों में, फिर भी मेरे सफर का वो हम सफर ना बन सका।

गर्मा गर्म एक शेर मिला है जो अर्ज के बिना हम इस गाने को जाने नहीं दे सकते कि मोहब्बत एक कैद है उसका आदी ना हो जाना, मोहब्बत एक कैद है उसका आदी ना हो जाना, सलाखें अगर टूट भी जाएं तो रिहाई मार देती है, मोहब्बत एक कैद है उसका आदी ना हो जाना, सलाखें अगर टूट भी जाएं तो रिहाई मार देती है। क्या सोच है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज रोशनी जी।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते बॉलीवुड सिज़्ज़ल का ये सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। उम्मीद है कि आज के गानों ने आपके संडे इवनिंग को और भी खूबसूरत बना दिया होगा। अगर आपका पसंदीदा वर्ल्ड कप मैच आने वाला है तो उसके लिए भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टू योर टीम। लेकिन अगर आपकी टीम हार भी जाए तो याद रखिएगा, खेल ख़त्म होता है, उसका जुनून नहीं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि और मिलते हैं अगले संडे फिर से आपके अपने बॉलीवुड सिज़्ज़ल पर। अभी के लिए आपको छोड़ते जाते हैं इसी सूफियाना अंदाज से, गुलों में रंग भरे, इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह फ्रॉम द मूवी हैदर, खास सत्यम भाई के लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
1: वेलकम टू RM2
0: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ,
2: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट,
2: 96.4,
3: सेंटर,
2: 99.4।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: रेडियो मस्ती,
1: द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। फील द मस्ती।
4: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड रेडियो मस्ती।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर, जहां रात की मस्ती अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। बस अगले 3 घंटे होंगे बॉलीवुड के सुपर गाने, और हम चाहेंगे आप इसके अंदर जरूर अपना साथ निभाएं। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और चलना शुरू कीजिए हमारे साथ इस म्यूजिकल सफर में।

कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो अभी काम खत्म करके घर की ओर पहुंचते हैं, वीकेंड का मूड तो साहब धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में पूरे दिन की प्लानिंग, अगले हफ्ते की भी पूरी प्लानिंग ये शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको रिलैक्स कराने के लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक हमेशा की तरह, बस चाहें कि हर एक गाने को दिल से महसूस कीजिए और जिंदगी को जी भर के जिए।

ये बॉलीवुड की दुनिया काफी कमाल है ना, कभी डांस, कभी रोमांस, कभी दोस्ती और कभी कभी फुल ऑन स्वैग। हर मूड के लिए एक परफेक्ट बॉलीवुड ट्रैक रेडी। लेकिन साहब, अगर पूरे दिन में कुछ ऐसा हुआ जो आपके मन मुताबिक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाकी चीज सोचिए जो होती आई है, अगर आप कोशिश करें तो उसको भी ठीक करवाएंगे। जस्ट लुक फॉर अ सॉल्यूशन रादर देन जस्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम।

भाई कह सकते हैं कि आज की प्लेलिस्ट तो फुल ऑन पैसा वसूल, कुछ गाने ऐसे जो इस टाइम पर बिल्कुल फिट होते हैं। वैसे कॉफी हो या चाय, ऐसे मौसम के अंदर तो फिर मजा आता है गानों का भी साथ जब आपको मिल जाता है। वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस, वर्ल्ड कप का फीवर अभी भी ऑन। आपके क्या हाल चाल है, आपने अपना गोल मारा कि नहीं?

वक्त अपनी रफ्तार से यूं ही चलता जा रहा है और एनर्जी भी अभी 100% है। जी हाँ, बॉलीवुड के गाने हैं ये, बीट्स हैं और ये जो कलरफुल मैजिक पैदा होता है उसी की बात कर रहा हूँ। गाड़ी में हो या घर पर, म्यूजिक का कनेक्शन कभी ब्रेक मत होने दीजिए।

अपना साथ कुछ ऐसा कि एक गाना खत्म तो दूसरे गाने के साथ आपसे मिल जाते हैं हम। ये जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसको चलते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब म्यूजिक नहीं होता ना तो लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, सन्नाटा सा हो गया, कुछ ऐसा जो मिसिंग हो गया। इसलिए साथ ही बनकर इसका साथ निभाते रहो, गाना पसंद आए तो गुनगुनाते रहो।

उसको धड़कने का एक मौका मिलता है, एक रीजन मिलता है। किसी के आने से धड़कनें तेज हो जाती हैं, किसी को बस सोचने से धड़कनें तेज हो जाती हैं। धड़कन यानी कि आपके दिल का मीटर। इस मीटर को चालू रखिए, अपने कदम म्यूजिकल दुनिया में रखिए।

कहते हैं कि मुस्कान बिल्कुल फ्री होती है, जो स्माइल होती है ना, ऐसे ही गाने के साथ जो फीलिंग होती है ना, ये भी फ्री में मिलती है। बस कभी यादें, कभी एक्साइटमेंट, और कभी कभी जैसे दिल डांस करने लगता है किसी की याद में, किसी की चाह में, और फिर लगता है कि इससे बढ़िया जिंदगी क्या होगी। नहीं, लेकिन म्यूजिक का होना ये अनिवार्य है।

Ladies and gentlemen, आप सुन रहे हैं RM2 Late Night Grooves, जहां पर हर रात हर वक्त एक बीट के साथ मूड सेट होता है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी की थोड़ी सी कमी है, तो बस गानों के साथ कनेक्ट होके देखिए साहब, म्यूजिक आपका मूड बदल देगा। इसलिए तो कहते हैं इसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसलिए म्यूजिक को सुनने की आदत ही बना लो, जो एनर्जी आप ढूंढ रहे हैं उसको एक बार फिर से अंदर जगा लो।

चलिए देखते देखते ऐसी बातों बातों में हम पहुंच रहे हैं मिडनाइट की तरफ। बस ये उम्मीद है कि आज की म्यूजिकल जर्नी भी आपके लिए खूबसूरत रही होगी। ऐसे ही कभी फिर से मिलते हैं कुछ अलग गानों के साथ, कुछ अलग अंदाज सुर और सांस के साथ। अपना ध्यान रखिए, म्यूजिकल रही और कॉन्फिडेंस को कभी कम मत होने देना। ये याद रखिए कि आज जहाँ पर एक दिन ख़त्म हो रहा है, वहीं पर नया दिन शुरू होने को है, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए गिफ्ट्स के साथ। अभी के लिए नमस्कार।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती। RM2 रेडियो मस्ती।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।